नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की पांचवी तिथि, तदनुसार दिनांक 27 सितंबर 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: इस समय सुबह 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि युद्ध

युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रुक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से एक जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदन वार।
1: ये है विविध भारती।

चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने जियो, यही सफलता का मार्ग है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये था भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब झरोका के अंतर्गत आपको बता देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

इस झरोका के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस लंका कांड का भाग 24। संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 12। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली। 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर और दिन में 2 बजे आप सुनेगा त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है पार्श्व गायक महेंद्र कपूर पर और आलेख और स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। और रात 9:30 पर सुनिए आज के फनकार जो केंद्रित है कार्यक्रम यश चोपड़ा पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आप सुनेंगे गायिका पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 2। संपादन सहयोग अम्बालिका सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। 10:45 पर आरंभिक उद्घोषणा मन की बात। 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे होगा सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे सुनवाए जाएंगे। 3 बजे मनचाहे गीत। 3:30 पर कार्यक्रम नाट्य तरंग में सुनिए मुक्ति एक चिड़िया की, लेखक अजीत पुष्कर, निर्देशक मधु श्रीवास्तव। 4:00 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2। संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। 5:00 छाया गीत का पुनः प्रसारण। 5:30 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 7:00 जमाला के अंतर्गत सैनिकों की शौर्यगाथा महावीर चक्र, हवलदार दयाराम की शौर्यगाथा, आलेख और स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज में आप सुनेंगे बांसुरी श्रीधर केंकर से और रात 8:00 हवा महल में सुनिएगा नाटिका तुम बड़े वो हो जी, लेखन निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। 10:00 छाया गीत में आप सुनिएगा आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात। 11:00 कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत देवानंद, हेमंत कुमार और महेंद्र कपूर पर आधारित आप सुनेंगे ये कार्यक्रम। 3 दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस के लंका कांड का भाग 324।

सुमेरु पर्वत को हाथों में लिए अयोध्या नगरी के ऊपर से जाते हुए हनुमान का विशाल रूप देखकर भरत ने अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर बिना फल वाला बाण मारा। बाण लगते ही राम राम हे रघुनाथ कहते हुए हनुमान

पृथ्वी पर आ गिरे। हे राम, हे रघुनाथ की ध्वनि सुनकर भरत दौड़कर उनके पास आ पहुंचे। हतप्रभ होकर वो हनुमान से सब कुछ जान लेना चाहते हैं, किंतु उनकी मूर्छा न टूटते देख उदास हो उन्हें छाती से लगा लेते हैं। वो श्री राम के प्रति अपने प्रेम और समर्पण की दुहाई देते हुए कहते हैं, यदि श्री राम के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और श्री रघुनाथ मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। कोसल पति श्री रामचंद्र की जय कहते हुए हनुमान उठ बैठते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण की कुशल की भरत की जिज्ञासा के उत्तर में हनुमान उन्हें सारी कथा संक्षेप में सुना देते हैं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। संगीत सरिता में प्रस्तुत इस श्रृंखला की आज आप सुनेंगे अंतिम कड़ी। इसके अंतर्गत आज सुनिए उपशास्त्रीय संगीत की कुछ रचनाएं। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। वैसे मैं ठुमरी गाता नहीं हूँ, मगर लोग बेहद फरमाइश करने लगे तो ये ख्याल नुमा ठुमरी बनाई है। लीजिए राग मिश्र बरवा पीलू में पहले झूला सुनिए,

क्षुधित पाषाण फिल्म में उस्ताद आमिर खान साहब ने खमाज में ठुमरी गाई है, वह बंदिश मैं आपको गाकर सुना रहा हूं और इस बंदिश के साथ श्रोताओं से इजाजत ले रहा हूं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। संगीत सरिता में आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आपने उपशास्त्रीय संगीत की रचनाएं सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर इनकी संगति की पुरुषोत्तम वालावलकर ने, तबले पर साथ दिया ओमकार गुलवाड़ी ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज सबसे पहले नमन कर रहे हैं हम अभिनेत्री संध्या को। संध्या यानी वो अभिनेत्री जो नजर आई थी दो आंखें बारह हाथ फिल्म के इस गाने में। इसके अलावा झनक झनक पायल बाजे,

नवरंग और अमर भूपाली जैसी फिल्मों में।

भरत व्यास के बोल थे वसंत देसाई की तर्ज थी फिल्म का नाम दो आंखें बारह हाथ, लता मंगेशकर की आवाज थी। संध्या की याद का दिन आज है और आज का दिन तो भाई कई कलाकारों को याद करने का दिन है और उनमें से एक हैं महेंद्र कपूर।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: बुलबिसरी गीत कार्यक्रम का अगला गीत ये रहा, फिल्म का नाम है तराना।
4: बहुत दिन हुए
3: अनुराधा फिल्म का ये गीत है, मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, संगीत पंडित रविशंकर का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: विविध भारती से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में अब आंचल फिल्म का गीत आ रहा है। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें हैं, कवि प्रदीप के बोल, संगीत सी रामचंद्र का है।

आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम विविध भारती से। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

दोस्तों विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिल्मकार यश चोपड़ा जी को याद कर रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये गाना।

अभी आपने सुना फिल्म वक्त का गाना, युगल स्वर थे आशा भोसले महेंद्र कपूर के, गीतकार थे साहिर लुधियानवी, धुन बनाई रवि ने। आइए हम है राही प्यार के कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं।

अभी आपने सुना फिल्म मोहब्बत जिंदगी है का गाना, जिसे युगल स्वरों में गाया महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। गीत के बोल एसएच बिहारी के, धुन ओपी नैयर की। श्रोताओं, आज हम महान पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को याद कर रहे हैं। महेंद्र कपूर सिर्फ एक आवाज नहीं, हिंदी फिल्म संगीत के उस स्वर्णिम दौर की पहचान थे जिसमें सुर में मिठास भी थी, जिनके सुर में मिठास भी थी और आवाज में बुलंदी भी थी। आइए सुनते हैं ये अगला गाना।

अभी आपने सुना घूंघट फिल्म का गाना, सुरों से सजाया आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने, बोल शकील बदायूनी के और संगीत रवि का। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: अभी आपने सुना फिल्म गुमराह का गीत, युगल स्वर थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर के, शब्दकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत में पिरोया रवि ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के, आइए सुनते हैं अगला गाना।
2: कली कब तक छुपेगी एक भंवरे की निगाहों से, चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से, बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा,
3: अरे जा जा
4: जा जा, जा।

से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लेकिन ताड़ने वाले जा अरे जा जा जा रे जा।

अभी आपने सुना सेहरा फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रामलाल का। इसी के साथ ही हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी को मेरा नमस्कार।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

0: समाचार कक्ष से पायल शर्मा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
1: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर

0: विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
1: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की जीडीपी में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,50,00,000 से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
3: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्ट बोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद जागृति।
1: आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले

सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है, पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं, कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देख

किनारे हम सुकून ढूंढने जाते हैं, उसे गंदा करना, कूड़ा करकट फेंक देना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है। आज जरूरत ऐसे पर्यटन की है जिसमें हम घूमने के साथ साथ प्रकृति, संस्कृति और विरासत का सम्मान भी करें। हर जगह अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर जगह की अपनी बोली है, अपना संगीत है, अपना स्वाद है और अपनी परंपरा है। यही विविधता पर्यटन को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और समझने का माध्यम भी बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कई बार किसी यात्रा से लौटने के बाद हमें महसूस होता है कि हमने केवल कोई जगह नहीं देखी बल्कि अपने भीतर भी कुछ नया खोजा है।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त स्वीकार किए।

0: अभी आपने सुना फिल्म जब तक है जान से ये गाना, जिसे गाया नीति मोहन, सूफिया अशरफ ने और जिसे लिखा गुलजार ने और संगीत दिया A.R. रहमान ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

अभी आपने सुना फिल्म तुझ में रब दिखता है का गाना। आवाज थी रूप कुमार राठौर की, गीत लिखा जयदीप साहनी ने और संगीत दिया सलीम ने। अब समय हो चला है एक अंतराल का।

0: अभी आपने सुना फिल्म अग्निपथ का गाना, अब उदित नारायण और सुनिधि चौहान के स्वरों में शब्दों में पिरोया अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अजय अतुल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

श्रोताओं, आज विदुषी शोभा गुटरू को हम याद कर रहे हैं। आज उनकी याद का दिन है। भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थी। उन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व भर में ख्याति दिलाई। शोभा गुटरू को ठुमरी की रानी कहा जाता था। आइए सुनते हैं चितलो कार्यक्रम का अगला गाना।

0: अभी आपने सुना हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का गाना, स्वर श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के, गीतकार इरशाद कामिल और संगीत दिया विशाल शेखर ने।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक

0: ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
2: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चित्रलोक कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज विश्व पर्यटन दिवस है। हर वर्ष 27 सितंबर को ये मनाया जाता है और इसका उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पर्यटन हमें अलग अलग देशों, संस्कृतियों, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से जानने का अवसर देता है और साथ ही स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। हम लोगों का ये कर्तव्य है कि जहां कहीं भी ऐसे स्थलों पर घूमने जाएं, पर्यटन स्थलों पर, तो वहां की स्वच्छता को बनाए रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गाना आपने सुना, जिसे गाया चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर ने, गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत विशाल शेखर का। आइए सुनते हैं चितलो कार्यक्रम का अगला गाना।

अभी आपने सुना इतनी सी खुशी गाना, फिल्म बरसी का गाना है, आवाज श्रेया घोषाल और निखिल पाल के, गीतकार सदानंद किरकिरे, संगीत प्रीतम का। समय हो चला।

अभी आपने सुना 5 घंटे में 5 करोड़ फिल्म का गाना, गायक लियोनार्ड विक्टर और सुजैन, गीतकार प्रवीण दबास। दोस्तों आज बता दें कि आज विश्व बधिर दिवस है, वर्ल्ड डीफ डे। हर वर्ष सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है इन लोगों के अधिकारों और उनकी उपलब्धियों और समाज में समान भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सुनने में कठिनाई किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा या क्षमता को कम नहीं करती और उनको तकनीकी सुविधाएं और सांकेतिक भाषा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसी के साथ ही आज विश्व नदी दिवस भी है, तो नदी की स्वच्छता और उसके संरक्षण के लिए हम सभी को बहुत ध्यान देना चाहिए। नदियां बहती रहेंगी तो तभी जीवन की धारा भी निरंतर बहती रहेगी। हम सब मिलकर अपनी नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का मिलकर प्रयास करें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म आशिकी 2 से और जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने और पलक मुछाल ने, और बोल लिखे इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है मिथुन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
6: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
5: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किशोरन लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: का।
1: अपने चाहने वालों का भरपूर प्यार पाया पार्श्व गायक महेंद्र कपूर ने। महेंद्र कपूर ने अपने गीतों के जरिए जो जगह बनाई है वो उनका सुरीला करिश्मा ही कहा जाएगा।

9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में जन्मे महेंद्र कपूर ने लगभग 50 साल तक हिंदी सिने संगीत आकाश पर राज किया, और आज जबकि वो हमारे बीच नहीं हैं, तब भी उनके गीत उनके हर चाहने वाले के दिल की वादियों में गूंज रहे हैं।

मोहम्मद रफी को अपना आदर्श मानने वाले महेंद्र कपूर ने तय कर लिया था कि उन्हें सिंगर ही बनना है, और इसीलिए वो अमृतसर से मुंबई आ गए। यहां उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में पूरी योग्यता हासिल करने के लिए अलग अलग गुणीजनों से इसकी शिक्षा प्राप्त की, जैसे पंडित हुसैन लाल, पंडित जगन्नाथ बुआ, उस्ताद नियाज अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा। और इसी का नतीजा था कि महेंद्र कपूर ने अपनी एक अलग सिंगिंग स्टाइल बना ली। बस फिर क्या था, महेंद्र कपूर की मेहनत रंग लाई। उन्होंने उस साल के मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन को जीत

0: चलाचल।
1: महेंद्र कपूर ने जो सिंगिंग कंपटीशन जीता उसे उस दौर के जाने माने निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने भी सुना था, जो कि उस समय अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म नवरंग के निर्माण की योजना बना रहे थे। वी शांताराम को महेंद्र कपूर की आवाज में एक अलग खनक, एक अलग सी मिठास और एक अलग सा सुरीलापन सुनाई दिया और उन्होंने अपने संगीतकार सी रामचंद्र से बात की। उन्होंने भी महेंद्र कपूर को सुना, तब दोनों ने निर्णय लिया कि महेंद्र कपूर होंगे फिल्म नवरंग के पार्श्व गायक।

नवरंग फिल्म भी हिट हुई और इसका संगीत भी। उसके बाद महेंद्र कपूर को बी आर चोपड़ा की फिल्म में गाने का मौका मिला। फिल्म थी धूल का फूल।

बी आर चोपड़ा की फिल्मों का दर्शकों को हमेशा इंतजार रहता था। उनकी फिल्मों का विषय भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होता था और संगीत भी लोकप्रिय होता था। महेंद्र कपूर की एंट्री बी आर कैंप में होने के बाद उनकी वहां जगह हमेशा के लिए तय हो गई, पक्की हो गई। फिर तो उन्होंने बी आर बैनर की सभी फिल्मों में गीत गाए और सभी हिट भी रहे। गुमराह।

महेंद्र कपूर को उपकार के गीत मेरे देश की धरती के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में गुमराह का गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, 1968 में हमराज का गीत नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, और 1975 में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, इसके लिए महेंद्र कपूर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। गायक महेंद्र कपूर ने अपना पूरा जीवन सिने संगीत को समर्पित किया और अपने चाहने वालों के दिलों में वो जगह बना ली जो तब तक बनी रहेगी जब तक संगीत की दुनिया में स्वर लहरियां गूंजती रहेंगी।

0: ये था पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, इतने बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब।
1: हाँ हाँ।
0: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
1: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ
0: जी,
1: मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था
0: जी, बिल्कुल।
1: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब, तो ये है वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया
0: जी,
1: करते थे।
0: जी।
1: जागीरदार जी बोले, साहब जी ये इतनी छोटी, आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मौसी लिखती थी।
0: अच्छा।
1: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
0: जी
1: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया।
0: अच्छा।
1: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं, तो बोले गाओगी, कहां। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था, हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना
0: जी,
1: था।
0: जी।
1: तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया, अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले ए जागीरदार, सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
0: बिल्कुल।
1: तो मौसिन को पूछा, अब सीखती है? मौसिन ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, इतना भी काफी था
0: हाँ,
1: उनके लिए, इतना कहना ही
0: बहुत
1: काफी
0: बड़ी
1: था।
0: बात।
1: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में, इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम है,
0: कम है। जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: जी
1: उनके साथ तो ये था मेरा, नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे
0: सीखा।
1: तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी,
0: जी
1: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीजें सुनाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
0: जी
1: तो हम गए और वो भी टेनिस खेलने गए थे, वो
0: अच्छा।
1: दिलीप साहब के साथ खेलते थे टेनिस। शाम को हम पहुंचे, उन्होंने उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, इस बच्ची को कुछ सिखाया है आपको? हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई
0: जी
1: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और, करते करते 10 बज गए।
0: रात की।
1: आप यकीन नहीं करोगे। और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले,
0: जी
1: मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइंस हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे?
0: अरे जी
1: तो अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आई ना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त, बिल्कुल आखिर आखिर में, सुनहरा संसार का, उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाती की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, पिथर हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी,
0: अरे
1: इतना ही था
0: वाह
1: बस।
0: जी।
1: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत, उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट,
0: जी
1: अरे
0: जी
1: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे। तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
0: आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई। तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है, ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी
1: मैं अपने श्रोताओं को,
0: जी
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है? और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा, पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ,
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी जी जी जी
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी। मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूं, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं, तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ

0: कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ,
1: बिल्कुल
0: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने
1: चलने लगा।
0: लगा।
1: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
0: आप अगर सुनो, देखो
1: हाँ
0: मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बुलप पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तू उस पे बात पे आ गई। पर वही तो वो
1: जी
0: बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी है,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: था बस।
1: और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता
0: बिल्कुल
1: था जब अभिनेत्री उसको उसी
0: जी
1: तरीके से अपने होठों को बनाकर
0: जी जी
1: गाती है तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
0: और जहां तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया,
1: जी
0: प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आर डी बर्मन,
1: जी
0: मेरे पंचमदा।
1: जी
0: इतनी प्रभावित, इतनी प्रभावित कि मैं मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूं।
1: जी
0: तो
1: होता है जब एक
0: बस
1: कलाकार दूसरे
0: हाँ
1: कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है तो आप कहीं ना कहीं इतने
0: हाँ
1: प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं
0: बिल्कुल।
1: इस तरह की।
0: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
1: बॉन्डिंग जो
0: बहुत
1: थी।
0: बहुत
1: हाँ
0: बहुत
1: तो
0: अलग।
1: क्यों ना पंचम दा का ये गीत सुन लिया जाए जिसमें
0: बिल्कुल,
1: आपने अपनी आवाज दी
0: तेरा
1: हो।
0: मुझसे है पहले का नाता
1: नाता
0: कोई।
1: कोई थोड़ा सा गाएंगी तो हमें
0: बिल्कुल
1: भी अच्छा
0: बिल्कुल,
1: लगेगा। आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
0: कोशिश करूंगी। हाँ
1: जी
0: गला बंद है पर कोशिश
1: जी
0: करूंगी।
1: बिल्कुल
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई।
1: वाह
0: तेरा मुझसे है पहले।

0: या जाने ना, ओ माने तू
1: वाह वाह
0: या माने ना।
1: वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
0: जी,
1: वो बच्चा अपने पिता
0: वो मुझे
1: शशि कपूर
0: पंचम
1: से
0: लाने
1: कहते हैं।
0: सिखाया, पता
1: जी
0: है? उन्होंने
1: जी
0: कहा वो शर्मिला जी का बेटा है, वो
1: जी डैडी करके।
0: शर्मिला जी
1: हाँ
0: कैसे बोलती हैं,
1: हाँ
0: मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा बोला यही चाहिए मुझे। हाँ आगे क्या है डैडी, मैं तो
1: हाँ
0: भूल ही गया, मुझे वो चाहिए। बहुत
1: बिल्कुल
0: यादें आपने ताजा की,
1: जी
0: आज
1: जी जी
0: मैं इसी बात पे आऊंगी। कुदरत जब किसी को बदम बनाना चाहता है ना, तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है, फैला देता है, कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं,
1: जी
0: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी,
1: अच्छा
0: इस गाने को लता जी गाने वाली थी
1: अच्छा
0: जी, मुझे तो वो पंचम दा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं, तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया कोई भी
1: जी,
0: गाना
1: अरे
0: अच्छा, पर तेरा दादा तुझे
1: देगा,
0: तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
1: अरे
0: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए है, प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा,
1: बिल्कुल।
0: एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे, दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे
1: अच्छा
0: और फिर ओवर टाइम, तो वहीं सोए थे वो। उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचम दा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की।

0: जी बहुत ज्यादा।
1: जी
0: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे, वो
1: कि आप
0: गाएगी,
1: गा लेंगी।
0: हाँ बोले वो गाएगी, गाएगी पंचम, वो गाएगी गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी,
1: जी
0: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है, और इसका जो, इसकी आवाज जो है वो मेरी फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल सूट
1: सूट
0: करती,
1: करती है।
0: इस करके ये गाना
1: क्या
0: मुझे मिला।
1: बात है। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। बताइए,
0: प्लीज
1: तेरा
0: प्लीज,
1: मुझसे है पहले का
0: बिल्कुल
1: नाता कोई,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आप ही का गाया हुआ सुन
0: जी
1: लेंगे।
0: जी

0: जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी
0: ये
1: जी
0: गाना बन गया,
1: जी बिल्कुल
0: तेरा मुझसे है पहले का
1: नाता
0: नाता
1: कोई।
0: कोई। कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं
1: जी
0: लोगों ने,
1: जी जी
0: किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए, पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि

0: कहा ना भुलाना तू वही रखवाला है, उसी को बुलाना तू आ जा। हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदाकिनी, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही हूं,
1: जी जी
0: देखिए
1: जी
0: मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ, यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये रा रा रा, और सॉफ्ट उसी को बुलाना तो आ जा
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये मैंने
1: ये
0: उनसे
1: आधार का
0: सीखा।
1: जी, ये पंचम धाम में ही
0: या
1: ये गुण
0: ये
1: थे
0: उतार चढ़ाव
1: जी
0: डायनामिक समझे से
1: जी
0: कहते,
1: जी जी
0: कहाँ कितना आपको जोर देना
1: देना
0: है,
1: है।
0: कहाँ आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह
0: कहाँ आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
1: वाह
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते थे।
1: जी जी जी मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का
0: हाँ
1: प्यार मिला, स्नेह
0: बहुत
1: मिला। उस
0: बहुत
1: छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल,
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: ये मेरा
1: जो
0: भाग्य ही है।
1: नसीब नहीं
0: हाँ हाँ
1: मिलता है, अच्छे
0: बिल्कुल,
1: अच्छों को नहीं मिला है।
0: नहीं
1: अभी
0: मिल,
1: भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
0: ना ना
1: जिनको
0: ना
1: हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले
0: ना
1: सके,
0: ना
1: सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: तो इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी, उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म, एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ जी
0: बांग्लादेश वॉर के
1: जी
0: ऊपर वो
1: जी
0: था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: बारात, वाह।
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही, मतलब मैं समझती हूँ, एक और मेरे दिल के करीब का गाना
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना।
1: करीब उतना ही।

0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान
1: हाँ
0: है।
1: हाँ बिल्कुल जी
0: तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी।
1: जी बिल्कुल
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी कोल्हापुर।
1: कोल्हापुरी ने जी
0: लेकिन इसके क्या होता, वहां प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स, मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो वहां एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट, मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी,
1: ने
0: कि मैं बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर
1: अरे
0: अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या।
1: हाँ
0: नहीं, मैंने
1: हाँ
0: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूं और मैं लता जी के साथ गा रही हूं,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात
0: मेरे लिए काफी
1: जी
0: है।
1: जी
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है आप
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा शर्त यही है।
0: प्लीज मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूं ना, फेड इन फेड आउट,
1: जी
0: पुश बैक,
1: जी
0: वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचम दास से
1: जी
0: सीखी।
1: जी
0: डा डा रा रा रा रा रा, आप समझे?
1: वो खुद भी ऐसे ही
0: डारा,
1: गा देते
0: हाँ
1: हैं
0: बिल्कुल,
1: जी।
0: डारा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ की उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात
1: धर्म
0: चंद्रा की फिल्म
1: धर्म कर्म भी था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मुकेश अंकल के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पाकधरी के साथ
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी, वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे, फिर मैं गाती थी एक तो ना, ये मेरा चॉइस रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
0: जी,
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है,
0: विधा है।
1: बिल्कुल मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है। लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का, उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है क्या गाती है, कर दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया। तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए, तरम पम। उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
0: जी
1: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
0: अरे
1: पर उनका बड़प्पन देखिए। ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ, मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बाप्पी दा की पहली फिल्म थी
0: जी,
1: नन्हा शिकारी।
0: अच्छा।
1: ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे, तो वो बाप्पीदा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बाप्पीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस कि अब तो गदा पड़ी, लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजाकर

0: आते थे, हाँ,
1: हाँ
0: इवन
1: हाँ
0: रिकॉर्डिंग्स में।
1: हाँ
0: वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही आप,
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए
1: क्या
0: उसका।
1: बात है,
0: वहां मैंने ये एक और, मैं
1: सबक
0: बहुत नोट
1: सीखा।
0: करती थी ये
1: जी
0: सब
1: जी
0: बातें,
1: ये नम्रता
0: कि ये
1: विनम्रता
0: नम्रता होना, अपनी कमजोरी को
1: समझते
0: समझना,
1: हुए,
0: जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती
1: और एक बच्चे के सामने जब
0: है।
1: कहा जा
0: बिल्कुल
1: रहा हो उसको
0: बिल्कुल।
1: अप्रिशिएट करते हुए,
0: और वही
1: तो
0: बात इस गाने में भी हुई
1: जी
0: कि मुकेश चंद्र वो तरम पम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
1: अरे
0: राज बच्चा तरम पम बोलेगा और मैं बोलूं, उसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो कह, अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है, तरम पम तरम पम। नहीं, मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
1: क्या
0: नहीं
1: बात है,
0: तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे। चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस
1: बिल्कुल,
0: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
1: बिल्कुल, इसको इसको
0: है ना,
1: स्वीकार कर
0: ये
1: लेना।
0: ईमानदारी
1: जी
0: है ना,
1: जी जी
0: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी।
1: जी जी
0: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए, कि
1: जी
0: क्यों, मैं समझती हूँ हर हर कलाकार के लिए ये वो है,
1: फिल्म धर्म कर्म का,
0: वो जो अंतरा है कि
1: हाँ
0: ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे जगवाले, आया था इस दुनिया में कोई मस्ताना,

0: लेकिन बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा
1: माटी
0: माटी
1: के
0: के मोल, ये
1: मोल।
0: हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये
1: बिल्कुल
0: गाना
1: बिल्कुल, ये
0: बजाइएगा।
1: गाना हम बजाएंगे और हमारे
0: जी
1: श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।
0: ना।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें
1: जी जी
0: समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना
1: जी
0: चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म
1: जी
0: अंकुश
1: जी
0: की,
1: जी
0: इतनी शक्ति हमें देना
1: जी
0: दाता, ये
1: जी
0: आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे,
0: जी शिवांगी
1: जो
0: जी
1: शक्ति कपूर जी की बीवी
0: की बीवी
1: और
0: हैं,
1: श्रद्धा
0: पद्मिनी जी की
1: कपूर
0: बहन है,
1: और
0: हाँ
1: श्रद्धा कपूर की
0: मम्मी
1: माँ,
0: है, हाँ
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी।
0: जी
1: मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी
0: और
1: जी।
0: उस गाने के बगैर

0: पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब, वो कौन थे वो,
0: जी
1: मैं
0: जी
1: क्या थी उनके
0: जी
1: आगे और क्या हूं,
0: बिल्कुल
1: इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, ए के नडियाड वाला फिल्म्स, आ गले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ, उनके पोते के साथ काम
0: जी
1: किया,
0: जी
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है और
1: मैं,
0: ताउम्र
1: हाँ।
0: याद रहने वाली बात
1: और
0: है
1: ये
0: ये।
1: आखिरी गीत, इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी, कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया,
0: बिल्कुल
1: मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट, एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूं। देखिए, मैंने सबकी जो करियर की जो शुरुआत हुई है, काफी, जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी,
0: उनके शुरुआती दौर में।
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस
0: इसमें से आप
1: यस
0: हमारे लिए लकी हैं।
1: तो ये हमने सोचा ही नहीं था
0: जी जी
1: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा,
0: बिल्कुल
1: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच
0: बिल्कुल
1: गया,
0: बिल्कुल। और
1: इतनी।
0: पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके
1: हाँ,
0: साथ
1: मैं
0: गाना आपको मिला।
1: बिल्कुल, और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
0: वो वही थी
1: ये उन लोगों की ग्रेटनेस
0: जी, वो
1: थी,
0: पुष्पा जी की
1: है
0: ही
1: ना।
0: आवाज हो सकती थी।
1: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
0: जी मेरा ही
1: कीजिएगा
0: सवाल
1: जरूर,
0: है,
1: तब मैं आपको
0: जी
1: बताऊंगी
0: मेरा ही
1: कि
0: सवाल है।
1: क्या फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
0: खड़े हो गए।
1: बस वो गाना,
0: जी जी
1: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले, पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत
0: करते
1: करते हैं,
0: हैं
1: हम कितने भाग्यशाली हैं, प्लीज आइएगा हमारे
0: जी
1: बैंक में, सिर्फ
0: जी
1: आइएगा
0: जी
1: तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया।
0: जी
1: मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में, शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
0: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की
1: जी
0: दुनिया में
1: जी
0: हम कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या
1: जी
0: मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं
1: जी
0: तो ये गाना नंबर वन पर होता है।
1: देखिए,
0: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से। और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को
1: है
0: हर
1: ना।
0: उद्घोषक ने बजाया है।
1: और अफसोस कि जिन लोगों ने, जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी, कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, वो
0: हाँ,
1: पहचान,
0: वो स्थान।
1: वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं,
0: बिल्कुल।
1: जिसके वो हकदार हैं।
0: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चलें तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
1: कितने गुणी,
0: बहुत
1: बाप रे,
0: बहुत बिल्कुल।
1: तो
0: तो चलिए
1: इतने
0: ये गीत हम सुनते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: The best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

0: best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूं
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूं यार
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
4: तो क्या करूं
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा
5: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए अब कितनी बातें भूल गया हूँ तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है
7: कहाँ से पता चलेगा
6: उद्गम से RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ
4: आज ही सर्च करूंगा
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
12: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं देश की उपलब्धियों की बात करते हैं भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं

ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें
ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा, बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था, तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार

फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों, उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब

इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहां फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी
ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे, 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने आचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही है। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही है। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है।
इस पहल के जरिए सस्ते

0: और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। महेंद्र कपूर, बलबीर, जोगिंदर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर, लुधियानवी संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

0: अंतराल के बाद यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमा निगार हैं हसन कमाल, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है निकाह।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है शिव हरी का, फिल्म का नाम है डर।

0: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुने अगला गीत। महेंद्र कपूर की आवाज में, नगमा निगार है हसन कमाल, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है तवायफ।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं।

आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कतील शिफाई, संगीत है उत्तम जगदीश का और फिल्म का नाम है पेंटर बाबू।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारत।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है वीर जारा।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत पोस्ट करते हैं और उनमें से आपको शब्द ढूंढने होते हैं और गाने चुनने होते हैं और साथ में आपकी अपनी टिप्पणियां साझा करनी होती हैं। और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणी आ रही है, तो एक बार इबारत हम दोहरा देते हैं जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या जरा सा झूम ले, जरा सा घूम ले,

कहाँ घूमे? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। नहीं नहीं वहां चले जहाँ मिलता है सुकून। कहाँ? जहाँ तुम कहो। ये कहाँ आ गए हम और फिर तुम कहो? चलो सजना जहाँ तक घटा चले। फिर ऐसी वादियों में चलेंगे जहाँ पहाड़ बादलों से बातें करते हो और कोई धीमी सी नदी हमारे साथ साथ चलती हो। कहाँ कहीं रुकेंगे? हाँ जहाँ नदी का पानी इतना साफ हो कि उसमें आसमान भी अपना चेहरा देखे, और अगर शाम हो गई तो चांदनी को साथ लेकर किसी पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ेंगे। इतना घूमना किसके नाम? पर्यटन के नाम? या ये सफर तो बस दिल के नाम है। और अगर रास्ते में कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो मुस्कुरा कर कहेंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली उस दुनिया की तलाश में जहाँ सफर भी कहानी हो और मंजिल भी। फिल्मी हो गए हो आज तो। क्या करें, यश जी की फिल्मों ने ही तो सिखाया है कि पहाड़ों के बीच भी मोहब्बत की एक पूरी कहानी बस सकती है। तो फिर अगला पड़ाव जहाँ तुम हो वहीं से सफर शुरू। तो चलो तुम हम और ये वादियाँ कुदरत के खूबसूरत नज़ारों के बीच। लेकिन वादा करो नदी के पानी को साफ सुथरा रखेंगे। एक कागज़ की कश्ती तिराएंगे और खुद भी एक कश्ती में बैठ चलेंगे नदी के उस पार जहाँ ऊंचे पर्वत के दायरे होंगे। दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि आज के शब्द कौन से हैं और गाने कौन से हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप गाने सुझाते रहिए और वो गाने हम अपनी प्लेलिस्ट में डालते रहें और आप तक पहुँचाते रहें। वैसे आज की जो इबारत है उसमें एक एक शब्द पर एक एक गाना है, तो ढूंढिए वो गाने भी, जरा गाने भी तो लिख डालिए। आपने पर्यटन के बारे में लिखा है, घूमने के बारे में, वादियों के बारे में, ये तो लिखते रहना है, लेकिन गानों के बारे में भी लिखना है। अब जरा बूझिए कि पहला वाला गाना कौन सा हो सकता है। अब आपने तो बूझ ही लिया है, बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भी डाला है कि आज यश चोपड़ा का जन्मदिन है, तो लगता है आज की इबारत में यश जी को याद किया जाएगा। और एक शायद आप भूल रहे हैं, आज तो महेंद्र कपूर की याद का दिन भी है और आज पर्यटन दिवस है। नदी के दिन को याद किया जा रहा है तो भाई बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए इन मिली जुली बातों के साथ हम सफर पर चलते हैं, सुरीला सफर। तो बताइए कौन सा वाला गाना होगा और इस गाने में कौन है कलाकार? हीरो हीरोइन का नाम बूझिए फटाफट। फिल्म कभी कभी, गाना कौन सा, पहचान लिया कि नहीं? लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, गीतकार कौन बताइए।

कभी कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल और राखी और शशि कपूर हीरो हीरोइन। श्रोताओं ने ये जवाब भी दिया है सही, और बहुत सारे श्रोताओं ने गानों के बोल लिखे हैं। ये पर्वतों के दायरे, ये कहाँ आ गए हम, नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी का सफर, तुम साथ हो तो हंसी, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, वादा करो नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, अच्छा तो हम चलते हैं, तुम भी चलो हम भी चले, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये पर्वतों के दायरे, और अनगिनत गानों के बोल लिख रहे हैं श्रोता। हम इनमें से जिनकी जिन मतलब जिन गानों की संख्या ज्यादा होगी वो गाना हम आपको सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा जी बी आर चोपड़ा के छोटे भाई थे, उन्होंने अपने भाई बी आर के साथ फिल्म निर्देशक का काम शुरू किया। तो जरा अब हमें बताइए कि यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सवाल दोहरा देते हैं, ये एक पहेली है आपको बूझनी है। यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? सन हमने बता दिया है, आपको फिल्म का नाम पूछना है। एक श्रोता लिख रहे हैं तेरे नैना तलाश करें, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो आज की इबारत के जरिए आपने बेहद सरल सफर की झांकी कर दी। कहते हैं जब सफर का साथी हमारे मनोभावों को समझता है, तब जगह चाहे कोई भी हो, सफर सुहाना ही हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में अगर किसी एक नाम को भव्यता, दिलकश नजारों और निश्चल प्रेम का पर्याय माना जाता है, तो वो है यश चोपड़ा। उन्हें हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस यूं ही नहीं कहा जाता, और खूबसूरत वादियां, खूबसूरत कुदरत के नजारे उनकी फिल्मों में देखने को मिलते हैं, और आज पर्यटन दिवस है और नदी दिवस भी है, तो ये सारे नज़ारे हम उनकी फिल्मों की आंखों से देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति हमें जीवन भर देती रहती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, सिर्फ उसे निहारे नहीं बल्कि उसका संरक्षण करें, यही प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता होगी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि यश चोपड़ा की फिल्मों ने भले ही प्रकृति की गोद में रोमांस को प्राथमिकता दी हो, आत्मा के उत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये प्रकृति हमें सदैव प्रेरित करती है। जहां प्रकृति मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, वहां देवता निवास करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा है गीत जो शुरुआत की आपने, और एक ने लिखा है कि क्लासिक शुरुआत, और एक श्रोता ने लिखा जरा सा झूम लूं मैं, अच्छा तो हम चलते हैं, ये कहाँ आ गए हम, चलो

सजना बड़ी लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और भी बहुत सारे श्रोता लिखते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं हमें, नैसर्गिक सुंदरता से भरे गीत सुनने को बुला रही है विविध भारती हमें। बोरीवली मुंबई सागर किनारे दिल ये पुकारे, विविध भारती तू जो नहीं तो हमारा कोई नहीं। विश्व पर्यटन दिवस पर रेडियो सखी के संग सभी मित्रों का बोरीवली मुंबई समंदर किनारे सुरीला सफर में स्वागत है। स्वागत आप सभी का पूरे देश के श्रोताओं के लिए, और जो देश से बाहर विदेश में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम उनका भी स्वागत। अब हम पहली दोहरा देते हैं, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? और हाँ, चूंकि पर्यटन दिवस की बातें भी चल रही तो आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और हमें ये भी बताइए कि अब से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक इन बातों के जवाब आप दे सकते हैं कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है जो आपने देखी हो। अब जरा बूझिए कि यही गाना आपने सोचा था या कोई और। हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिएगा और गीतकार का नाम संगीतकार का नाम भी बूझिएगा। किसके नाम है ये गाना, ये तो पता चल ही गया होगा आपको।

वक्त फिल्म का गाना था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, चांदनी। और अभी जो सवाल था, वक्त फिल्म में कौन हीरो हीरोइन है, गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताया सुनील दत्त साहब।

साधना, हमने इधर पूछा उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि 2 सप्ताह पहले ही मैं और रेखा कश्मीर की वादियों से भोपाल से लौटे हैं। आज के गाने उन्हीं वादियों में बिताए पलों को याद करा देंगे। डल झील में नौका विहार, पहलगाम की वादियों में झरझर झरने बहते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने अपना सारा संगीत और सौंदर्य यही लाकर एकत्रित कर दिया हो। तो भाई, आप सभी जो सुन रहे हैं, अगर कहीं घूमने गए हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो वहाँ की यादें साझा कीजिए और वहाँ के अनुभव हमें बताइए। और अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका अब आगे मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा की फिल्मों को अक्सर भारतीय सिनेमा का ट्रेवलॉग कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को केवल प्रेम कहानियां ही नहीं दिखाई बल्कि उन्हें देश विदेश की खूबसूरत वादियों की एक जादुई सैर भी कराई। संक्षेप में कहें तो यश चोपड़ा की फिल्में सिनेमा हॉल की एक टिकट में देश विदेश घूमने का एक पासपोर्ट थी। उन्होंने मध्यम वर्ग के भारतीयों को सिनेमा के पर्दे के जरिए दुनिया देखने की आंखें दी और पर्यटन को बढ़ावा में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो बताइए, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम बूझिए। और चलिए फिर वादियों में चलते हैं और आपको बूझना है फिल्म का नाम, जरा जल्दी बताइएगा फिल्म का नाम। पिछले दिनों आप कौन सी वादियों की ओर गए थे, किन पहाड़ों की सैर की थी, ये भी आप बता सकते हैं।

यश चोपड़ा के जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं, महेंद्र कपूर की याद को नमन कर रहे हैं और साथ में विश्व पर्यटन दिवस और विश्व नदी दिवस हम मना रहे हैं। तो आप अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते चलिए। हमने आपसे पूछा था अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। अभी तक बहुत कम जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं और अपनी यादें आप ताज़ा करिए। और अगर आप सफ़र पे गए हैं और किसी पहाड़ पर, किसी पहाड़ी पर वादियों की सैर की है आपने, तो सबसे यादगार सफ़र कौन सा रहा है ये भी बता सकते हैं, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं, ताकि जब श्रोताओं को मौका मिले तो उन जगहों पर वो जा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा को भारतीय फिल्मों में विदेशी नज़ारों, विशेषकर बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों को दिखाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड पर्यटन में की। फिल्म चांदनी का प्रभाव, उन्होंने फिल्म चांदनी के बड़े हिस्से की शूटिंग स्विट्जरलैंड में की, जिसके बाद वहाँ भारतीय पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं का जाना काफ़ी बढ़ गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत फिल्मों में सुंदर लव स्टोरी और खूबसूरत जगहों का दर्शन कराने वाले यश चोपड़ा जी के गीतों पर लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में आधुनिक तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ऐसा मौका होता है, एक साथ छुट्टियां हो तो साथ में और भी छुट्टियां लेकर धर्मपत्नी, मैं और मेरे बच्चे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां नदियों और पहाड़ों के दर्शन हो, साथ में तीर्थ स्थलों के भी। तो बताइए कि आपके शहर या गांव के इर्द गिर्द कौन सी नदी है और नदी को साफ सुथरा रखने के लिए क्या आप कोई निजी स्तर पर कोई मुहिम चलाते हैं या आप भी कूड़ा कचरा करके चले आते हैं अपनी पहचान छोड़कर। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप नदी के किनारे जाते हैं तो नदी को एक जीवंत इंसान के रूप में देखें और ये देखें कि उन पर कचरा फेंकना कितना अन्यायपूर्ण होगा। तो आप अपने आप उन्हें प्रणाम करेंगे और वहाँ जो कचरा होगा उसे बीन कर डस्टबिन में डालकर आएंगे। चलिए अब चलते हैं वहीं जहाँ पर इबारत में वादा किया गया था और किसी ने कहा था चलो सजना जहाँ तक घटा चले। तो कहाँ तक घटा है और कहाँ तक आपकी यादें हैं, यादों को दोहराइए और जहन में बसाइए, विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कीजिए। बताइए हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार का नाम पूछा था हमने, मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, यहां तक कि हमने सवाल पूरा किया उधर जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हरी भरी मैदान का सीना चीर कर बहती हुई एक बहुत छोटी सी जलधारा है जिसे महज एक छलांग लगाकर ही पार किया जा सकता है, लेकिन वो कोई नहर नहीं बल्कि एक नदी है क्योंकि नदी की सभी विशेषताएं उसमें हैं। मैं कभी गई तो नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पर्यटन के बारे में पूछा है तो मैं समंदर के तट पर मुंबई और मेरे प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अपनी सभी उद्घोषिका बहने यूनुस खान साहब से मिलने की तमन्ना रखता हूँ। कब पूरी होती है मुझे नहीं पता। भाई आप अपनी तमन्ना जब चाहें पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अक्सर लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून बहुत उत्साहित करता है, खासकर कुछ लोग एवरेस्ट की चोटियों को छूकर लौटते हैं तो इस जर्नी पर उनकी आत्मकथा से संबंधित किताब हमारे मन को छू जाती है। तो अब जरा बताइए कि आपने कोई पहाड़ों और इस तरह के संस्मरण वाली किताब पढ़े हैं तो जरा लिख डालिए कौन सी किताब, हो सकता है हमारे श्रोता भी उसे पढ़ना चाहें। एक श्रोता ने लिखा है कि घूमना तो मुझे बहुत पसंद है, प्रकृति का सुहावना सफर हो और झरने की अटकेलियां करते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां से ठंडी ठंडी हवा, ऐसा संगीत मानो जमी आसमां सब झूम रहे हो, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत बज रहा है। भाई आप अकेले का नहीं, बहुत सारे श्रोताओं के गीत आज इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब कुछ जगहें दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, मेरे यात्रा संस्मरण में कई देश और शहर शामिल हैं लेकिन दुबई का समंदर का किनारा, न्यू जर्सी की एक जगह और भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी की जगह, इन तीनों स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे सबसे ज्यादा सम्मोहित है। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, उस यात्रा के बारे में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए, और नदी के किनारे बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार पल हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और अब एक और पहेली आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें कि 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमने सन बता दिया है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो अब बताइए कौन सा गाना आपने चुना था, यही जो हम पूछने बजाने जा रहे हैं या कोई और गाना। और हाँ जरा बताइएगा इसमें कौन है हीरो कौन है हीरोइन। ये गाना महेंद्र कपूर की याद के नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बूझ सकते हैं। पहली पहली हीरो हीरोइन का नाम, कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, ये पता है तो ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, फिल्म गुमराह और बहुत जल्द जवाब आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से, सुनील दत्त और माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि सपने और सुंदरता का जब भी मेल होता है तब बनता है सिनेमा। अंधेरे सिनेमा घर में चांदी के पर्दे पर फिल्मी सितारे हर एक तरह के कौतुक से सम्मोहन रचते हैं। इन किरदारों की डोर निर्देशक के हाथ में होती है और जब निर्देशक यश चोपड़ा जैसा हो तब एक फिल्म बनती है जो दर्शकों को कभी ट्यूलिप से भरे फूलों की घाटी में ले जाती है तो कभी पहाड़ पर। क्या बात है भाई, बड़े ललित शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। वे जबरदस्त तरीके से कहानी में मसाला लपेटते हैं। भावना के झंझावात में डूबते मन को किस्म किस्म के कलाकारी से यश चोपड़ा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले ही आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी का होना किसी कविता में संगीत के मिलने जैसा है। चांदनी वो नाम है जिनके बिना यश चोपड़ा की फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाई बात यहाँ यश चोपड़ा की फिल्मों की है, लेकिन सुनने की बात है, दिल की दास्तां है, चांदनी है, गाना वैसा ही है। तो चलिए पहले ये गाना सुन लेते हैं और आप जरा बूझिए फिल्म का नाम। और हाँ, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब आपने लिखे या नहीं, अगर नहीं लिखे तो लिख डालिए, क्योंकि आपके जो जवाब आ रहे हैं आप तक हम पहुंचाते जा रहे हैं। अब हमें जरा ये भी बताइए कि आपके शहर या गाँव के आस पास कौन सी जगह है जहाँ लोग घूमने आते हैं, या कौन सी

नदी है जहाँ पर लोग आते हैं और सुकून पाते हैं। कुछ शहर में कुछ ऐसे पार्क भी बने हैं जहाँ कुदरत की छांव मिल जाती है, तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि आपके शहर कभी कोई श्रोता जाए तो उन जगहों पर घूम सके, उन जगहों को देख सके आपकी निगाहों से। चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको पूछना है फिल्म का नाम और आवाज किसकी है।

हमने आपसे पहली पूछी थी 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया फिल्म डर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ये हमें बड़ी खुशी दे रही है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे कुछ दूर पर स्थित काले देव की नदी है जिसमें लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे डिस्पोजल पानी की बोतल अक्सर पड़ी रहती है जो जीव जंतुओं को और प्राकृतिक वातावरण को दूषित करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जीवन में बहुत ज्यादा घूमने के मौके तो नहीं मिले, फिर भी जितना घूमा उसमें कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियां लुभाती हैं और गुजरात के जंगल में शेर का इंतजार करते हुए जंगल का नजारा और जो सन्नाटा नीरव शांति और निर्मोही वातावरण की अनुभूति की है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्यारी सी छोटी सी बात, प्रकृति बोलकर हमें शुक्रिया नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसकी खामोशी को समझें। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के पास कंडराला जंगल है, वहां लोग आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, अगर मौका मिला तो मैं बार बार राजस्थान की रेतीली वादियों में जाना चाहूंगा, वहां सुनहरी रेत, डूबता सूरज और लोकगीतों की धुन दिल को छू जाती है। भाई क्या बात है, थार के टीलों पर खड़े होकर सारी चिंताएं मिट जाती हैं और वहां पर फोटोग्राफी का शौक भी तो होगा जिसे आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाहूंगा एक बार परिवार के साथ मॉरिशस जाऊं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल उत्तराखंड की सैर की थी सब परिवार हमने, शिमला से मनाली आते समय देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ को देखना अद्भुत, ऐसा सौंदर्य जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। क्या बात है भाई, आपने तो चित्र खींच दिया हमारी आंखों के सामने, वो देवदार और चिनार के कतार नजर आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत में जब कुदरत का रंग शामिल हो तो क्या कहने, मन बाग भाग हो जाता है। आपकी इबारत प्रेरणा बन जाती है क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो फिर बताइए, पहाड़ों पर या वादियों पर आप जाते हैं तो अकेले जाना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, मतलब सोलो ट्रिप पर जाते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पहाड़ी पर बैठे खामोशी से देखते हैं वहाँ की खूबसूरती को, नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उन पहाड़ों से, नदी से अगर कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अब जरा आप बताएंगे क्या है फिल्म का नाम और किसकी है आवाज?

हाँ तो भाई बताइए, दिल की दास्तां आपने कभी सुनी है? खुद के दिल की दास्तां सुनी है क्या? बताइएगा जरा हमें भी। और अगर आपके दिल की दास्तां किसी ने सुनी और आपने सुनाई तो क्या था अनुभव? ये बातें आप बताते रहिए और साथ में हमारे सवालों के जवाब, पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। हमने आपसे पूछा था पहाड़ या नदी से कोई एक सवाल पूछना हो आपको, तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? यूं तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, तो कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? और हमने आपसे पूछा था कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है और कौन सी जगह आपकी यादों में बसी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी जन्मस्थली हरदा, जो मध्य प्रदेश का एक उन्नत जिला है, यहाँ पावन माँ नर्मदा का मीठा जल प्रवाहित होता है। मेरे जिले की जलवायु बहुत अनुकूल है खेती के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यदि पहाड़, नदियाँ, तालाब स्वच्छ होंगे तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, नहीं तो आने वाला कल बस पर्यटन नाम के ही लिए रह जाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, पर्यटन का असली आनंद तभी है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे महसूस करें। पहाड़ों की शांति, नदियों की कलकल हरियाली वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन हमें घर से दूर ले जाता है लेकिन प्रकृति हमें अपने और करीब ले जाती है। कहीं पहाड़ों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर हमें आज पर्यटन की उस दुनिया में ले जा रहा है जहां सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का गद्यांश प्रकृति और देशाटन से जुड़ा है। सुरम्य वादियां, पर्वतों की सैर, इच्छा हर एक दिल में रहती है। हरी हरी वादियों में जब कभी आसमां में आवारा से घूम रहे बादलों को थोड़ा आराम और सुकून की चाहत जागती है तो वो किसी भी वादी में पहुंच जाते हैं। वादियां बादलों का दूसरा घर होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफर हम तय करेंगे, नदी की सुरमई धारा, झरनों के कलकल, पहाड़ों की ऊंचाई और हरे भरे पेड़ों की शीतल छाया के साथ। तो चलिए एक बार फिर सैर करते हैं वादियों में। फिल्म का नाम बूझिए फटाफट और किसकी है आवाज, गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए। और नदी से कोई सवाल पूछना हो तो सवाल भी लिखिए।

आरंभ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में। सभी श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बताया और जल्द बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत सामने से देखने की इच्छा है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, यहाँ के मंदिर कालीघाट दक्षिणेश्वर देखने योग्य है। यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और गंगा नदी है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं? क्या उस फिल्म का कोई संवाद याद है? अगर याद है तो वक्त बहुत कम है, इतने कम वक्त में देखते हैं कौन श्रोता लिख पाते हैं कुछ संवाद। और हाँ, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म का नाम तो आपको पता होगा, उसका नाम भी बताइए। और अब सुनते हैं ये गाना।

भाई ये गाना आप सुन रहे थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गाना था। आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और हमने आप सभी से पूछा था यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म कौन सी है, सभी श्रोताओं ने बताया जब तक है जान। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अभी तो और गाने होने चाहिए थे, भाई अगर वश में होता तो हम वक्त को कैद कर लेते और सुरीला सफ़र का ये सफ़र चलता रहता, लेकिन क्या करें। जो कुछ बची हुई टिप्पणी है वो हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कभी कभी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं देवी जी आप पूजा हैं तो हम आपके पुजारी हैं। और हमने आपसे पूछा था यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, क्या उन फिल्मों के संवाद याद हैं। कुछ श्रोताओं ने संवाद लिखे, अगर आपको याद है तो आप भी लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कोई गाना सुनवा सकें या आपसे और कोई सवाल पूछ सकें। तो बस आज का सफ़र बस इतना ही। कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पर्यटन यानी दुनिया को करीब से देखना। पर्यटन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि नए अनुभवों, नई संस्कृतियों और नए लोगों से जुड़ने का माध्यम है। जब हम किसी अनजान शहर की गलियों में घूमते हैं, किसी ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं या प्रकृति के बीच कुछ पल बिताते हैं, तो हमारी दुनिया और थोड़ी बड़ी हो जाती है। कभी कोई सफर हमें पहाड़ों तक ले जाता है, कभी समुद्र के किनारे और कभी इतिहास की उन इमारतों तक जो सदियों पुरानी कहानी कहती हैं। पर्यटन हमें अपने देश की विविधता से परिचित कराता है। भाषा बदलती है, खान पान बदलता है, पहनावा बदलता है, लेकिन हर जगह इंसान और उसकी मेहमान नवाजी हमें उससे जोड़ती है। और इसीलिए पर्यटन यानी घूमना फिरना हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।

आज पर्यटन का मतलब केवल घूमना नहीं, बल्कि उन जगहों की सुंदरता और विरासत को सुरक्षित रखना भी है। यात्रा करते समय प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना, ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना और स्थानीय संस्कृति को समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम जिस खूबसूरत दुनिया को देखने निकलते हैं, उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही खूबसूरत छोड़ना है हमें। ये पर्यटन यानी घूमना हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता, बल्कि हमारी सोच और अनुभवों की दुनिया को भी विस्तृत करता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में तो पर्यटन का संसार और भी अद्भुत है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक, राजस्थान के किलों से लेकर पूर्वोत्तर की हरी भरी पहाड़ियों तक, हर प्रदेश अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है। इसलिए पर्यटन केवल यात्रा भर नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को अपने भीतर सहेजना भी है।

घूमना फिरना जितना आनंद देता है उतनी ही जिम्मेदारी भी हमसे मांगता है। विश्व में जिस खूबसूरती को हम देखने जाते हैं वहां कूड़ा फैला देना यात्रा नहीं हो सकती। जिन ऐतिहासिक इमारतों को देखने हम जाते हैं उनकी दीवारों पर अपना नाम लिख देना उस विरासत का घोर अपमान है। जिस नदी, झील या समुद्र के किनारे हम सुकून ढूंढने जाते हैं उसे गंदा करना, कूड़ा करकट फेंक देना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है। आज जरूरत ऐसे पर्यटन की है जिसमें हम घूमने के साथ साथ प्रकृति, संस्कृति और विरासत का सम्मान भी करें। हर जगह अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर जगह की अपनी बोली है, अपना संगीत है, अपना स्वाद है और अपनी परंपरा है। यही विविधता पर्यटन को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और समझने का माध्यम भी बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कई बार किसी यात्रा से लौटने के बाद हमें महसूस होता है कि हमने केवल कोई जगह नहीं देखी बल्कि अपने भीतर भी कुछ नया खोजा है।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथोन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षो में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए ट्रैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में

0: भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहाँ 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
3: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मैटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाए। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
2: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन उत्पादकता स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: साथियों, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर को इस गीत में, जिसे लिखा था SH बिहारी ने। संगीत था OP नैयर का और फिल्म का नाम था कहीं दिन कहीं रात।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, आइए अब सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आई दिन बहार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है अनमोल मोती।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शिवान रिजवी, संगीत है ओपी नैयर का और फिल्म का नाम है दिल और मोहब्बत।

साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत है रवि का, इस गीत में आवाज है महेंद्र कपूर की और फिल्म का नाम है हमराज।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है भरोसा।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, नेवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला देवीदास पोपलघट और शिवांश, सेक्टर 8 टाउनशिप भिलाई से श्रीमती प्रमीला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक दीपक और आसमा श्याम कुंवर, पहारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, गांधीनगर रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बीरक जयतेग बीरक और मीका बीरक, शिवाजी चौक कटनी से अनिल तामकर अमर तामकर दिलीप वर्मा राजू तामकर रजन रजक संजीव वर्मा विपिन गुप्ता अरुण कनौजिया संजय सोनी पवन यादव सुनील जैन लालू सोना मोना हनी यश सौम्या और मम्मी पापा, नागपुर महाराष्ट्र से विनायक भामरे गणेश भामरे और पार्थ भामरे, गांव बनवाड़ी पटियाला पंजाब से सुखविंदर सिंह रूपेंद्र सिंह अमरजीत सिंह दर्शन सिंह भोला सिंह नीरज और जश्न, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भाई भरतलाल सिन्हा लक्ष्य कुमार सिन्हा और बिटिया लक्की सिन्हा। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। कोथा गुड्डम ते तेलंगाना से याकूब दशना, नूर जहां रहीम, शरीफ खान, रूबीना, अलीमा और रहीमुन्निसा। जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, राजाराम नगर देवास से शांति महाजन, राकेश महाजन, मधु महाजन, मुकेश महाजन, राजेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल। गाजियाबाद यूपी से सुषमा, श्वेता, अभिषेक और एमडी शर्मा। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। बदलापुर जिला ठाणे महाराष्ट्र से सिद्धांत गवाहनकर, प्रणीता, अर्जुन, टुक टुक, प्रिंस और एकांक्ष गवाहनकर। मेहरे नगर अमरखेड़ विदर्भ से डॉक्टर वैशाली शैलेश गवाहनकर, श्वेता सुजीत गवाहनकर, ध्वनि और सरिता अभिजीत गवाहनकर। सावंगी महाराष्ट्र से गजानन जिरवार, प्रकाश निजीभा और मिथिलेश जिरवार। विनायक नगर निजामाबाद तेलंगाना से ज्योति श्रीहरि कूचन, राजकमल सिनिग्दा, विनोद कुमार, ग्रीष्मा रामनंदन और समस्त कूचन परिवार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। सनावत से राजकुमार बोडाना, यश कुमार बोडाना, मास्टर अशोक वर्मा और शेख मूसा भाईजान, मोरटका बाफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, कोनिका और मानस पटेल। कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से मदन लाल देवांगन, प्रभा, भूपेश कुमार, कुसुम और तुषार देवांगन। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति चौधरी, मालती, देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खुरचेतुम, सोनू और मोनू। दतरंगी से विश्राम मनोज कुमार और दशरथ राम, गुलाबरा छिंदवाड़ा एमपी से भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी और सुरेश निखाड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है चरस। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त अमरावती महाराष्ट्र से प्रोफेसर विवेक देशमुख, प्रोफेसर दीपक देशमुख, दिविज देशमुख और डॉक्टर अनिरुद्ध देशमुख। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, मुजतुबा खान, आफिया खान, आयशा खान, हादिया खान और शोएब खान। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कलीचा। तो साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आप सभी ने पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश और ज्ञान भूषण शर्मा, अर्रिया जोकीदार से सौम्या नाजनीन, रुकैया खातून, जुबैदा खातून, आबिदा खातून, सरफराज आलम और समस्त परिवार, मिडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, मीनाक्षी तिवारी, हरिपाल कौर और सुनीता शर्मा, अयोध्या नगर रालेगांव शहर से विनोद कुमार डवड़े, प्रतीक शुसारी और प्रथमेश कुमार डवड़े और साथ में है विनोद मंडाड़े, कस्बा बराडा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरकीरत मंत और गुरशब्द सिंह राहुल की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

साथियों, आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भिसे और योगिता जाधव से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

0: विविध भारती।
1: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव।
2: क्यों रे प्यारी, फिर तूने झाड़ू चलानी शुरू कर दी? तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है।
3: काम तो सब हो गया है बाबूजी।
4: एक बात कहूं बाबूजी?
2: अब क्या है?
4: रमेश बाबू, आप लोगन के बहुत हैला कान के हैं। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन जन्म के दुश्मनी निकालें, सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए।
2: तू मेरे घाव क्यों कुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती?
4: अरे अपन खून होता तो कभी ऐसा करते?
2: अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है?
4: कोई कमी नहीं, आपन तो अपने होती बहू जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाती। बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ा रही है।
2: देख अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बकबक ना कर।
4: मुझे इतना टेम कहा जो गप्पे मारू, चलती हूँ, राम राम।
2: अपना खून? इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है। मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही, डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती, और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए नितांत स्वार्थी मैंने ये जुआ खेल डाला। उसकी फोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो वो मां बन सकती हैं। उनके बच्चे में मेरा ना सही, मेरे पति के कुल का खून तो होगा ही।
5: ललिता, इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो। नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या?
2: नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी, और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा, समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं।
5: इसमें तुम्हारा क्या कसूर, भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया।
2: उसी के चक्कर में नीमा बीबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए।
5: नीमा बीबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना।
2: मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती, उनकी शादी ना हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का, और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
5: पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ ना कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी ना माने तो अभागा।
2: नहीं मानते, अब तो लोग बहू को घास फूस और नोटों को लक्ष्मी मानते हैं।
5: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो।
2: बैठिए कमला बहन, चाय बनाकर लाती हूँ।
5: अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए।
6: जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते।
5: नमस्ते।
6: मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा ये है तो चला आया।
5: ये बिहारी बाबू का घर है।
6: अच्छी मुसीबत है, बतलाइए। चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था तो घर ही नहीं मिल रहा, शगुन साइड ठीक नहीं दिखती।
5: आपको किसकी शादी करनी है?
6: अपनी?
5: हाँ?
6: क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बाल नहीं पता है मेरा, देखिए देखिए।
5: ठीक है ठीक है।
6: रोज बादाम का शरबत पीता हूँ।
5: अरे तब तो बैठिए, हमें आपकी ही तलाश थी। अरे ललिता देख जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है।
6: शगुन नहीं, बांकेलाल, बांकेलाल। मेरा नाम बांकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया।
2: अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं,
5: तब तो बात बन गई।
6: कैसी बात, मैं समझा नहीं।
5: हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी।
6: वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी, दवा की दुकान खोली है मैंने, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव भर काजू खरीद लूंगा।
5: क्या आपकी माँ बीमार है?
6: नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पाप फटक सकती है, हम लोग फल और मेवा ही खाते। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना।
5: हाँ सो तो है, बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना।
6: नहीं जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें, लीजिए तो।
5: अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, खाते पीते घर के हैं बाके बाबू।
6: बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला, पर माँ कहती है शादी कर ले।
5: अच्छा ये बताइए, शादी में हमें खर्च वर्च क्या करना पड़ेगा?
6: अरे कुछ नहीं, पीली धोती पहना कर लड़की को विदा कर दीजिए, सोने से तो मैला दूंगा। हाँ बारात के खातिरदारी जरा अच्छी हो जाए बस, बात ये है कि मेरे सभी दोस्त मुर्गा तोड़ हैं।
5: अरे, अरे उसकी चिंता ना करिए, उतना तो हो ही जाएगा, हम तैयार हैं। लड़की वगैरह दिखाने के लिए कब मिले आपकी माँ से?
6: अरे कोई जरूरत नहीं, शादी तो मुझे करनी है, नौकरी करती लड़की भी क्या देखने की चीज है।
5: ललिता एक फोटो तो दे दो।
6: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, अरे मेरी तरफ से बात पक्की, लीजिए खीर खाइए इस खुशी में।
5: तो हमारी तरफ से भी बात पक्की, लीजिए आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है।
0: समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता।
5: इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है समय का सही उपयोग करना चाहिए।
0: कैसा समय, मैं कुछ समझी नहीं।
5: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
0: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
5: यही सही समय है।
0: कैसा समय?
5: उम्र के दौर का समय, इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए।
0: 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था, शायद बी ग्रुप है।
5: ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने वाला खून भी होता है। सच सच बताइए, जब कभी ये खून आपके अंदर दौड़ता है, आपको बेचैनी नहीं होती?
0: कभी होती थी पर अब नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी किसी ने पसंद नहीं किया।
5: कोई पसंद करे या ना करे, प्रकृति तो अपने ढंग से कार्य करेगी ही, कौन तो दौड़ेगा।

0: ही। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने किसी को पसंद किया हो।
1: प्यारी चाय ले जा।
0: आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको किस तरह के पुरुष पसंद हैं?
2: देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है।
0: आखिर क्यों?
2: इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया। कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं, मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है।
3: अरे शादी हो जाए, सब ठीक हो जाए।
2: प्यारी तू चुप रह। कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं। जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं?
0: अच्छा लीजिए, चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं।
2: बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं एनिमिक हूँ।
0: ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज एनिमिक नहीं है। इसके लिए क्या लड़कियां शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते? आपके लिए अब भी समय है।
2: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको? इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूँ।
0: शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी।
2: शायद अब वो समय नहीं है।
0: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है।
2: मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे।
0: इतने रुपए थे, भाई अभी हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था।
2: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
0: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया?
2: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
0: देखिए, अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें। मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा, सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
2: मगर कौन समझता है इस बात को? तीन जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
3: बीवी जी, बुरा तो लगता ही है, का कहा जाए ऐसे लोगन को।
0: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी।
2: जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं, सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
0: देखो, इस तरह मन छोटा ना करो। लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौत के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौत के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौत के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है।
2: पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हूँ फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ, क्यों नहीं, मैं पहनूंगी फूलों की हथकड़ी। मेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। नथ पहनने के लिए मेरी बंदाक छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ।
0: बहुत बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई।
2: जी, मैंने कुछ कहा क्या?
0: हाँ, आपने समय को पहचाना है, खून की मांग को स्वीकारा है।
3: बीवी जी, हाँ, जीभा पर ले आओ गर्मा गर्म चाय।
0: अरे चाय ही नहीं, मिठाई। अभी जा, औरत और सा जा।

0: मेरी जिससे शादी हुई है उसे मैं जानती भी नहीं, अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मांग में सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया गया था।
1: अब किसी के लिए प्रेम प्रेम नहीं है, है तो सिर्फ अपनी बेचारगी जो चेहरों पर छद्म प्यार बनकर उभरती है।
0: चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती नहीं मेरे चारों ओर पुष्पी पुष्पी कर रहे हैं।
1: हाँ इस समय तो तू कथा परी है, सात समुद्र पार करके यहाँ आई है। अभी तारों को पाने के लिए तो ऊपर उड़ेगी, मगर आज तो आसमान में तारे मटमैले नजर आ रहे हैं।
0: क्या हुआ, सुन रही है बाहर शोर? कैसा शोर है ये?
1: शराब के नशे में चूर यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार।
0: यही है मेरे सपनों का राजकुमार। घर में आई नववधू का भी उसका ख्याल नहीं।
1: वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो एक बुलबुल पिंजड़े में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ले आई है।
0: ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बंध चुकी है।
1: यही तो नारी जीवन की त्रासदी है, अजीब रिवाज रस्में हैं। पति कैसा भी हो, इस डोर में बंधने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा।
0: तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढककर विदा किया गया है, जानती है क्यों? क्यों नहीं, ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे।
1: ना ना ना ना ना, ऐसा नहीं है, ताकि वो वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके।
0: कौन हो तुम, क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है।
1: हाँ हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा, सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी?
0: मैं अभी से क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी ये कह सकती हूँ।
1: अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो?
0: ऐसा मत कहो, मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया।
1: मगर तुम सरलता से उस पर प्यार मत उड़ेलने लगना,
0: रहस्यमयी बन जाना। इस उम्र में भी नटखट लड़की की तरह चतुर। देख तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है, मैं चलती हूँ।
1: चली गई,
2: कौन जो आ गया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ पास आओ, ये सिर क्यों ढक रखता है?
0: नहीं मैं सिर नहीं खोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ।
2: कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो?
0: सभी कहते हैं, पर ये जरूर है कि मेरा खून सुंदर है।
2: खून? अरे खून तो सभी का एक जैसा होता है, सुंदर चेहरा होना चाहिए।
0: वो ठीक कह रहे थे, इसी समय मुझे नटखट लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमयी। नहीं मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती।
2: तुम सही होगी तो मैं ही आ जाता हूँ।
0: ना ना मैं बीच में ये तकिया रखे देती हूँ।
2: ऐसा क्यों करती हो?
0: ताकि आप अपनी सीमा जान ले और मैं अपनी
2: सीमा। अच्छा अब क्या करूँ?
0: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
2: रानी तुम क्या कर रही हो?
0: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ।
2: बहुत बच्चे अब क्या कर रही हो?
0: अब वेणी में फूल गूंद रही हूँ।
2: ये फूल कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो खाली हाथ आया ना।
0: ये फूल बसंत ने दिया।
2: मेरे कमरे में बसंत? अरे वाह,
0: देखो फूल बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ।
2: रति की तरह सुंदर? मगर तुमने तो अभी तक अपना घूंघट भी नहीं खोला।
0: क्षण क्षण मेरी
3: रही है। मैं रति हो गई हूँ।
2: रति की तरह सुंदर, रति की तरह सुंदर मैं तो
3: मगर दूर रहिए, सीमा मत पार कीजिए।
2: अरे सीमा की कोई बात नहीं ना, मैं हर किस रुक नहीं सकता।
3: जो करना है कर लूं, अपने खून के लिए, मातृत्व के लिए, जीवन की गति के लिए। हो सकता है ऐसा स्वाभाविक सच फिर नहीं बोले जिंदगी।
2: तुम क्या बोलने लगे हैं? देखो अब मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता।
3: चिड़िया उड़ने से पहले आसमान से नहीं पूछती कि मैं तुम्हारे आंगन में उड़ूं या ना उड़ूं?
2: अरे वाह, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, तो बहुत ही सुंदर हो गए। सचमुच तुम तो बहुत सुंदर हो।

0: अच्छा तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं।
0: मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही नहीं।
1: नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिली जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते?
0: क्यों नहीं, मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूँ वहाँ।
1: आप वहाँ क्या करेंगे?
0: अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्ज ही क्या है?
1: इनको मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा, मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो, रखवाओ ये सामान वगैरह।
1: भाभी अब ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब, आज गोद भराई होनी है ना। मगर यहाँ तो कोई इंतजामी दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दूं।
2: टालने की क्या जरूरत?
0: अरे भाभी के रहते तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता क्यों करती हो?
2: उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
0: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
2: अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।
0: हाँ हाँ और क्या, भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले?
2: बांकी बाबू आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट, पसंद आया? और ये साड़ी, अरे नीमा बेबी कहाँ गई?
3: आंगन में गई हैं, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है।
2: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीमा बीबी, नीमा बीबी,
1: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। मैं कितों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूं, अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहाँ, किससे कहूं? मगर मेरे पेट में जो पल रहा है वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं, नहीं होने दूंगी।
2: अरे नीमा बीबी तो बदहवास पड़ी हैं। बीबी जी आप इतनी कमजोर हैं,

0: बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती।
1: आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ।
0: चलो मैं भी चलती हूँ ना।
1: नहीं नहीं भाभी, आप चिंता ना करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बटवाइए, बंधनवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई।
2: मैं चलूं तुम्हारे साथ?
1: क्यों परेशान होंगे आप भी, मैं होकर आती हूँ ना अभी। तब तक आप भाभी के साथ जश्न का प्रबंध करें, डॉक्टर के पास सिर्फ मुझे जाना भर है।

0: डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा परी लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी। हाँ, नहीं तोड़ सकी। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई? कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है। फिर गलत क्या है? क्यों बतलाऊं? तुम हो कौन? नहीं पहचाना? मैं तो सुहाग रात के दिन भी तुम्हारे साथ थी, मगर सामने तो नहीं आई। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है? अब भी नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूं। फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? वहां तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न? तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती ना?
1: नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
0: तब अपने बैग से कागज निकालो और लिखो।
1: क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा?
0: उन्हें ही, जिन्हें तुम छोड़ आई हो। लिखो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ।
1: झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का यही, सिर्फ यही एक रास्ता है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता। जाओ, जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ। इस पत्र का क्या होगा? वो सामने लेटर बॉक्स में डाल दो। फिर क्या होगा?
0: कितनों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति।
1: मुक्ति?
0: हाँ, मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में

0: मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। यह हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे है।
2: संगीत के साधक।
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम, घनश्याम नाम, शिव

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
6: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।
0: मदन जी के साथ बहुत सारी यादें आपकी हैं, संगीत बनाने की और रिकॉर्डिंग्स की, तो कुछ सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर।
6: रिकॉर्डिंग की उनकी मुझे एक आज भी याद है। मैं पहुंचा रिकॉर्डिंग में और देख रहा हूँ कि एक आवाज आ रही है सिंगर की।
0: अच्छा,
6: कोई गा रहा है और वो भी क्लासिकल फील है पूरी। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा चुपके देखा तो मदन जी गा रहे हैं बाजा पकड़ के।
0: खुद ही गा रहे हैं?
6: खुद ही गा रहे हैं।
0: गाना कौन सा था?
6: गाना नहीं, ऐसी आलाप गा रहे थे, क्लासिकल गा रहे थे
0: जी,
6: और उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद पता चला कि खंडाला में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में आए थे और आके जल्दी पहुंच गए और अपने खून वून आया हुआ उनको, उसमें अपने आप को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लिया।
0: ये घटना मुझे पता है, मदन जी के जब बेटे समीर कोहली जी आए थे विविध भारती, उन्होंने सुनाया था कि वो ट्रक से वापस लौट रहे थे क्योंकि गाड़ी जो है वो तबाह हो गई
6: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको बाद में पता चली
0: जी।
6: बट वो जो गायकी थी वो क्या फील था उसमें। हा हा हा,
0: तो वो जो पूरा वो एक्सीडेंट की बदहवासी और वो
6: सारी उन्होंने वहां निकाली।
0: गजब की बात है ये तो।
6: सारी संगीत के दौरान उन्होंने गाया बजाया तो उससे क्या होगा कि सारा जितना भी बैकलैश था ना वो सारा खत्म हो गया।
0: खत्म हो गया,
6: नाउ ही इनटू म्यूजिक।
0: गजब की बात है ये।
6: देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रेमेडी है।
0: हाँ,
6: आज डॉक्टर्स इंजीनियर सब म्यूजिक सीख रहे हैं ताकि हमको ईज मिले, हमको सुकून मिले, हमको स्ट्रेस फ्री हो।
0: हाँ,
6: ये कितना बड़ा एक एजुकेशन है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से ट्रक में बैठ के आया और स्टूडियो में आया और उन्होंने आते ही उन्होंने बाजा पकड़ा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगता है शायद एक डेढ़ घंटा गा रहे थे वो।
0: बाप रे,
6: जब हम पहुंचे तो आवाज चल रही थी, गा रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की।
0: कौन
6: सा गाना मुझे याद नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग की।
0: जहां तक मुझे लगता है रुके रुके से कदम वो गाना था। वो गाना यहाँ सुन लेते
6: हैं। हमारे कदम रुकी गए थे उनकी आवाज सुन के।
0: क्या बात है।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाए और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के साथ।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भादों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी।
0: अच्छा,
1: अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ मदन जी का चलते हैं, वहां चलकर बैठेंगे। तो मदन जी का पियानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा, पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था
0: तब
1: उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: दिल ढूंढता है गाना अरेंजमेंट किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग दी तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे होते, मदन साहब, कौशिक साहब सब बैठे थे, भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल।
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
0: अरे बाप रे।
1: ही वाज सो ड्रंक कह दो या आई डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही वाज। वो पूरे ऐसे बैठ गए। बाद में गाना हम लोगों ने पास किया।
0: अच्छा।
1: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना, ये टेक ओके है, ही डजंट वांट एनीथिंग, इट वाज सो पैथेटिक।
0: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
1: लेकिन
0: इन तमाम चीजों
1: क्या
0: का
1: गाना दे गए, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: तो जी देखिए वो गाना दिल ढूंढता है फिर फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है। अब ये सैड है
0: जी।

0: वही पोएट्री है, उसको एक सैड और एक, और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में।
1: जी, एक
0: अभी
1: ही गाने
0: हमको
1: की।
0: याद है कि अरे यार मदन जी का क्या गाना आया, और सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है,
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा गान ने, बहुत अच्छा म्यूजिक
1: इसमें
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: एक मेटल फ्लूट सुनाई देती है।
0: हाँ, वो की फ्लूट है, वो
1: जी,
0: उसकी मुरली जी ने बजाया है,
1: वाह
0: जो
1: वाह वाह,
0: सैक्सोफोन के बहुत,
1: क्या बात है।
0: मुरली सिंह करके,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: पंचम जी के असिस्टेंट भी थे,
1: बिल्कुल।
0: और हमने साथ में बहुत काम किया उनका।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था और उनसे बहुत
0: हाँ
1: लंबी बातें रिकॉर्ड की
0: हाँ
1: थी।
0: वो मतलब ऐसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल,
0: उनसे शुरू हुई, उन पे खत्म हो गई,
1: क्या बात
0: ऐसा
1: है।
0: हुआ।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था।
1: अचानक निधन, हंसते हंसते
0: एक पार्टी में थे वो,
1: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था डरियस। तो मदन जी लेफ्ट उनकी बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे
0: जी जी
1: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
0: इंडस्ट्री के लोग, म्यूजिक वाले,
1: खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा। तो मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को।
0: अरे बाप रे,
1: लिटरली गाली, मैं आनी गाली नहीं बता सकता
0: जी,
1: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ के चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
0: अरे बाप रे, अरे गजब,
1: आप सोचिए क्या भाव है,
0: क्या भाव है कि अब मैं जवाब किसको दूंगा।
1: डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
0: किसके लिए म्यूजिक
1: किसके
0: बनाऊंगा,
1: लिए म्यूजिक बनाऊंगा।
0: अद्भुत बात है
1: ये, मुझे आज भी याद।

0: और कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक साहब का छोटा भाई राज, राज सोनिक जो मेरे यहाँ काम करता था, लास्ट तक मेरे साथ काम किया, हमारी कुछ बात नहीं तो बोला मैं तो आपके बाजू में खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये बात सही है, उन्होंने गालियां, बोले गालियां इतनी गालियां दे रहे थे हम सोच नहीं सकते, मतलब मदन जी को ये पता ही नहीं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे एंड ही इज अब्यूजिंग हिम।
1: लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए थे,
0: जज्बाती हो गए थे, इतना प्यार था, एक आत्मा का जिसको प्यार कहते हैं
1: वो था।
0: सारे तू तो चले गया, किसको जवाब दो, जैसे
1: क्या दौर था, क्या
0: जैसे,
1: लोग थे।
0: जैसे संगीत ही चले गया हो ना, ऐसा हो गया ना
1: जी।
0: क्योंकि उस दौरान में बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की, अगर आपने एक अच्छा गाना लिख दिया तो आपको लिखने वालों के 15 फोन आ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: एक साहिद साहब ने अच्छा गाना लिख दिया तो मजरू साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद बख्श भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है। तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए ये सोचा जाता है।
1: जी
0: ये दौर में फर्क हो गया,
1: जी जी
0: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का,
1: जी जी जी
0: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
1: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का

0: जिक्र है, उनसे भी आपका एक नाता रहा है, उनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
1: बड़ी खूबसूरत, हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे,
0: अच्छा,
1: उन्होंने बुला लिया उनको, और मुझे याद है कि श्याम राव जी और भूपी जी और केरसी जी,
0: ये म्यूजिशियंस थे,
1: ये उनके अरेंजर थे,
0: अच्छा,
1: ये उनके सलाहकार थे, केरसी और श्याम राव, भूपी जी तो दोस्त थे उनके। तो हम लोग पहुंचे, पूरा रेसल वेसल हो गया, 10:15 बजे
0: जी,
1: छोटा सा आदमी आता है 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए,
0: वो छोटे कद के थे,
1: पहली दफा देखा उनको।
0: जी
1: तो आते ही किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आए अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी हैं ऐसे अंदर चले गए,
0: जी
1: अंदर से माइक्रोफोन ऑन करके बोलते हैं, हाँ म्यूजिक सुनाओ। अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी 1-2 नहीं बोलेंगे हम तो बजा ही नहीं सकते, हम सब बैठे हुए हैं, आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ। तो केसी चुप, श्यामराव भी चुप, भोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे, कम से कम 60-70-80 म्यूजिशियन तो होंगे। फिर अंदर से, अरे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते, म्यूजिक सुना कैसी श्यामराव, म्यूजिक सुना। फिर चुप।
0: अरे
1: अब ये मैं, हम सोच रहे हैं नए बच्चे हैं कि ये क्या हो रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा है म्यूजिक सुना, और हम सब चुप बैठे हो, म्यूजिक रेडी है। कैसी बोलते, ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे। हाँ तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही। अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहे शुरू हो गई। अरे हम तो हैरान हो गए, मैं यार ये कौन सा प्यार है यार, वहां की वहां गाली, म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अब सुनाओ के नहीं सुना। हाँ अब सब थाली, अब सुनाएंगे म्यूजिक, और उसके बाद म्यूजिक शुरू
0: ये
1: हुआ,
0: प्यार था, ये
1: म्यूजिक शुरू
0: थी।
1: हुआ, आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया, 2-2.5 घंटे 3 घंटे में गाना खत्म।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: ये पहली याद थी उनके साथ,
0: क्या बात है,
1: ऐसा एटमोसफियर, आप सोचो कि वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
0: तब बजाएंगे,
1: तब हम बजाएंगे,
0: गजब गजब
1: तो ये एटमॉस्फेयर था।
0: जी, उनके साथ आपने कुछ गाने बजाए,
1: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए,
0: अच्छा
1: याद नहीं।
0: SD बर्मन,
1: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
0: उनकी यादें माटी है।
1: बर्मन साहब के यहाँ तो बजा ही रहते क्योंकि सेम ग्रुप था
0: जी जी
1: पंचम जी का। इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी,
0: हाँ
1: शायद गाइड होगी,
0: ओके,
1: तो हम लोग बजा रहे थे, रिहर्सल हो गई, रिहर्सल हो गई, तो बर्मन साहब ने कुछ मलोरी जी को पीस बताया, बीच में खड़े होके, महबूब स्टूडियो की बात है, पीस बताया उन्होंने, तो उन्होंने वो पीस बताया और मैंने वो यहाँ से वो पीस बजा दिया।
0: अरे गजब,
1: तो ऐसे मुड़ के देखा, मलोरी को पूछते बंगाली में, कौन बजाया, बोले वो लड़का, फिर से बोलो बजाने के लिए, तो मैंने फिर से बजा दिया, तो मलोरी को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए,
0: अरे बाप रे,
1: जैसा उत्तम बजा रहा है
0: गजब।
1: यूनुस जी, मैं बैठा था 2nd या 3rd रो में, 2nd डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी।
0: ओ
1: दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया,
0: वाह,
1: मैं 3rd रो से 1st रो में आ गया।
0: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे वो, और अपनी धुन के पक्के,
1: बहुत जबरदस्त।
0: कुछ और घटना याद आती है?
1: और एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरारी ने छोड़ दिया था,
0: जी,
1: तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आम तौर पे कोई नहीं करता, बट मेरे से होती चली गई,
0: अच्छा,
1: क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट मेरे से ये चीज होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा, जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती चली गई।
0: जी,
1: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए,
0: अच्छा,
1: हाँ, कि मेरे साथ काम करो, तो मैं गया, बैठा, उत्तम बासु मुरो तो छोड़ के चले गया, मैंने कहा हाँ दादा वो तो पता चला, वो तो वहां बैठे हैं मद्रास में, तो हमको काम करना है इसका गोल्डी का, बहुत इमीडिएटली काम करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, क्या क्या सोच रहे हो, मैं कहा दादा आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम हमको ना बोलता है, मैं कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा, फिर मैं दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी मैं कभी नहीं लेता, मैंने कहा आपके साथ बहुत बजाया है, बासु मुरारी काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो, मैं कहा दादा नहीं कर पाऊंगा। यूनुस कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा, दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा,
0: जी,
1: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें,
0: जी जी
1: खूब भालो खूब भालो
0: खूब भालो
1: खूब भालो।

0: चला गया।
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली? लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली
1: जी।
0: मेरे को सबका ऑफर आया
1: जी,
0: कल्याण जी का ऑफर आया, पप्पी लहरी का ऑफर आया, अनु मेलक मेरे पीछे, शंकर किशन का ऑफर आया, आर डी बर्मन का बाद में जब वासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा मदन जी का ऑफर आया मुझे
1: जी जी,
0: मैंने कभी नहीं लिया।
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी दूसरे
0: मैं उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कैसे जाऊँ
1: जी,
0: एज ए म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट एज ए अरेंजर में नहीं लिया मैंने आज तक किसी की जगह नहीं ली।
1: क्या बात है,
0: कभी नहीं।
1: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे?
0: एज ए म्यूजिशियन बजाते
1: हैं, दादा के लिए भी बजाते?
0: हाँ हाँ दादा के लिए, लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था
1: जी,
0: फिर वो अनिल अरुण आ गए थे।
1: हाँ हाँ,
0: तो फिर वो ग्रुप पूरा फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सके, उनके हैंड में तो बिल्कुल नहीं बजा सका।

0: उत्तम जी देखिए, नौशाद साहब की, मदन मोहन की हमने बातें की, हमने रोशन साहब की बातें की, एस डी बर्मन की बातें की, और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें करनी जरूरी है?
1: देखिए जी, मैंने तो सब क्या बजाया है, कोई ऐसा संगीत का नहीं था 1962 के बाद
0: जी,
1: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो।
0: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया?
1: हाँ,
0: और अन्ना क्या अभी बजाया?
1: अन्ना क्या बजाया? अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमय किस्सा है वो।
0: बताइए।
1: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या है, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री हो गई तो सब साइलेंट हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उसके मुलाजिम हैं, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन हैं, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त हैं।
0: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा।
1: ये उनका फर्क था। और रिकॉर्डिंग के बाद ये वही अन्ना है कि आप कोई सोच भी नहीं सकते।
0: जी।
1: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
0: जी,
1: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल विहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफी साहब आए, रफी साहब ने रिहर्सल किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो अंदर से शर्मा जी की आवाज आई, अन्ना की आवाज आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं, जॉनी गोम्स उनके असिस्टेंट थे, ओके सर, 1-2 दिया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, फुकड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू और अंतरा चल रहा है, अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
0: जी,
1: क्रॉस शुरू और अंदर से कट हुआ,
0: अरे रे,
1: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ, एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
0: क्रॉस पे
1: कट हुई तो अंदर से आवाज आई। अच्छा, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब अंदर से बोलते थे तो म्यूजिशियन भी सुना करते थे और सिंगर भी सुना करते थे।
0: जी जी
1: क्योंकि सिस्टम ऐसा था, अभी हम सब शांत 70-80 म्यूजिशियन शांत बैठा हुआ है, हुआ क्या है, अभी अन्ना बोल रहे हैं, रफी साहब आप मोहम्मद रफी हो, आप सबके मोहम्मद रफी हो, आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं सुनता, लेकिन क्या है, ये गाना श्री रामचंद्र का है, अगर आप श्री रामचंद्र को नहीं गाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये श्री रामचंद्र का गाना है। चुप रफी साहब, आप जो क्रॉस गा रहे हो ना, ये शंकर जयकिशन की जगह है, मेरी जगह ये है,
0: गजब,
1: उन्होंने अपनी जगह गा के सुनाई, मेरी जगह ये है, ये श्री रामचंद्र की जगह है, वो शंकर जयकिशन की जगह है, और आपको श्री रामचंद्र की जगह गाना है। रफी साहब सॉरी सॉरी अन्ना सॉरी अन्ना सॉरी अन्ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं,
0: फिर से शुरू हुआ,
1: टेक खत्म हो गया।
0: वाह, इसलिए ये बार बार अड़चन आ रही थी।
1: ओके हो गया, एक छोटी सी जगह थी, बोले वो शंकर जयकिशन की जगह है, ये मेरी जगह है।
0: गाना याद है?
1: नहीं गाना वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे, सुबह अलग दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद रहेगा कहाँ क्या बोला।
0: जी जी जी,
1: ऐसी हमारी हालत थी
0: जी,
1: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकर जयकिशन का बजा रहे हैं, तो ये हालत
0: लगातार भागदौड़ होती थी।
1: लगातार भाग,
0: उत्तम जी बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केरसी दादा से, बजी दादा से, मनोहरी दादा से,
1: ये सब लोग जी। ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे वाइफ के साथ पास रहता था घर में, बाकी तो सब इनके साथ ही रहता था
0: जी।
1: तो केरसी जी, भूपी जी, मरोरी जी, और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16-16 घंटे हम साथ में थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ बीता,
1: ज्यादा गुजरी जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
0: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे? इनमें
1: पक्के दोस्तों में भज्जी था।
0: अच्छा,
1: भज्जी एक वकील थे, म्यूजिशियन थे।
0: हाँ,
1: वो भी गुजर गया अभी। भज्जी, वकील, भूपी जी,
0: भूपिंदर सिंह जी, जो बहुत बड़े गायक भी थे और गिटारिस्ट थे,
1: और केरसी जी
0: जी,
1: ये हम लोग

0: अच्छा ग्रुप था, रात को साथ में बैठना,
1: जी
0: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था,
1: जी
0: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको। तो ये
1: पार्टियां वो लोग करेंगे और
0: पार्टियां वो लोग
1: छोड़ेंगे आप।
0: करेंगे क्योंकि सब दोस्त थे, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
1: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे?
0: बदमाश तो सारे थे सारे बदमाश थे।
1: जी
0: म्यूजिशियन जो है ना
1: जी
0: एक्चुअली बदमाश होता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, क्योंकि
1: आप आपकी भी
0: बहुत,
1: थी बदमाशियां?
0: हाँ नहीं, हमारी बात, हमारी बदमाशी भी क्या म्यूजिक में निकलती थी।
1: अच्छा
0: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है,
1: जी,
0: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो वो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता
1: बिल्कुल
0: है। एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना, ये एक आत्माई ढांचा है। कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है, इलैयाराजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बॉर्न नॉट मेड।
1: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। इलैयाराजा का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया है, बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है।
0: जी, मैंने, राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए,
1: जी
0: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
1: 600 फिल्में, तो
0: हाँ,
1: जीवन भर का काम होता है ये तो।
0: बट वो तो 35 फिल्में एक साल में करते थे, ऐसा प्रोजेक्टर पैदा नहीं होगा।
1: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी
0: बहुत
1: बिताया,
0: मेरा एक पाँव मद्रास में, एक पाँव बॉम्बे में।
1: तो वहां आप बतौर अरेंजर होते थे।
0: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था,
1: आई
0: और कभी कभी उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था,
1: वाह,
0: और हम साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही चलते थे, बहुत
1: लैंग्वेज की
0: टाइम।
1: प्रॉब्लम,
0: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
1: क्या बात है। इलैयाराजा की म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती हैं, बहुत इंट्रिकेट काम होता है,
0: बहुत,
1: तो कुछ यादें
0: मैं
1: बताइए।
0: आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा म्यूजिक कोई नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात
0: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है,
1: जी,
0: बट ही इज द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम ए टू जेड।
1: वाह,
0: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है, ये ही नोज।
1: वाह,
0: तो ये मोस्ट लर्नेड, ये हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे, बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं। जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, आर डी बर्मन, सी रामचंद्र, शंकर जय किशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला, एक नोटेशन लिखने वाला चाहिए, और ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ऑब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले।
1: जी
0: वहां पे अरेंजर की जगह है,
1: जी
0: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए तो मेरी एक जगह थी वहां पे,
1: बिल्कुल,
0: बट इलैयाराजा के वो किसी की जगह नहीं है।
1: वो सारा
0: इलैयाराजा
1: काम खुद
0: क्या
1: करेंगे।
0: सारा काम खुद करते, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा म्यूजिक हो।
1: क्या बात है,
0: जैसे मैं आज अगर मैं करता हूं, जब मैं अपना काम करता हूं, मेरा सारा काम खुद का है, मैं लिखता भी खुद हूं, जब सोलो पीस होते बजा भी कुछ, लेकिन स्टिल व्हाट राजा साहब जो लिखते हैं वो एक आम आदमी नहीं लिख सकता, एक जानकार भी नहीं लिख सकता और आम आदमी भी नहीं लिख सकता।
1: सदमा का गाना मुझे याद आ रहा है
0: हाँ, सुरेश वाड़कर,
1: जी, आपने बजाया
0: मैंने बजाया।
1: ऐ जिंदगी गले लगा ली।

0: इलिया राजा की बातें हुई, मुझे एक चीज याद आई, नय्यर साहब।
1: ओहो,
0: उनसे जुड़ी भी यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए। बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था, तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जो फिल्में आई थी?
1: तब मुझे बुलाया था
0: जी,
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी। नहीं,
0: आपने मना कर दिया?
1: ना, नहीं कर पाया आपके साथ। नय्यर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री
0: जी,
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स ऑफ दोज डेज, रफी साहब। और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी,
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नय्यर साहब।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: फॉरन ये काम किया, ये पैसे
1: नहीं, उनका ये था कि भाई ये प्रोड्यूसर को बोला कि कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना। ये मैंने किस्सा सुना हुआ है
0: जी जी।
1: ये पैसे ले आना, तो प्रोड्यूसर बोलता है इतने पैसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद। अच्छा, कब दोगे? 3 महीने, तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे।
0: जी,
1: तो नय्यर साहब इज द म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिशियंस को सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5000 रुपया करना सिंगर का, ये नय्यर साहब।
0: वाह,
1: रफी साहब 500 रुपए लेते हैं, 5000 रुपए दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर सोलो अच्छा बजा, मरोड़ी जी तो हमेशा उनसे, किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रुपए डाल दिया, 100 रुपए डाल दिया, जो भी डाल दिया,
0: जो अच्छा बजाया उसका इनाम।
1: तो ये नय्यर साहब थे।
0: वाह, अब बाद में नय्यर साहब की शैली में तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था।
1: हाँ, वो मैंने किए।
0: वो आपने किया है?
1: हाँ,
0: उसके बारे में बताइए।
1: वो ही बस मैंने दो या तीन गाने किए, उसके ज्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा
0: नय्यर साहब की शैली,
1: पूरी नय्यर साहब को लेके। और क्या होता है ना, देखिए नय्यर साहब नय्यर साहब है,
0: बिल्कुल।
1: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो, नय्यर साहब है।
0: हाँ,
1: आप कॉपी हो,
0: बिल्कुल।
1: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल, डू समथिंग ओरिजिनल।
0: बहुत सही बात करें।
1: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है
0: जी।
1: अच्छा, कुछ डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
0: हम सब ये बात करते हैं कि नय्यर की शैली के गाने।
1: हाँ, तो बात वही आ गई ना
0: जी,
1: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चले, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनना तो फिर नय्यर सबको ओरिजिनल सुनते हैं ना।
0: गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
1: हाँ, मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदिवर जी, सबके साथ काम किया हुआ
0: जी जी जी।
1: रिश्ते भी अच्छे थे, नमस्ते नमस्ते थी।
0: बख्शी साहब?
1: बख्शी साहब के साथ मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
0: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है के टाइम करेंगे।
1: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब। एक तो वो पान खाते रहना
0: और पीक दान,
1: वो पीक दान रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल आई।
0: हाँ,
1: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दिल तो पागल कर रहा हूँ। मैं तो अपना टेलीफिल्म कर रहा था, यशराज फिल्म्स की।
0: हाँ, ये बताया गया था कि ये एक टेलीफिल्म है।
1: टेलीफिल्म,
0: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
1: नहीं, वो टेलीफिल्म ही थी।
0: ओके,
1: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली,
0: मदन जी की बड़े
1: लड़के
0: जी,
1: वही तो लेके गए मुझे।
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ा जिक्र है,
0: इसको इसको,
1: इसको होल्ड रखते हैं,
0: इसको होल्ड रखते हैं।
1: हाँ,
0: यहाँ सिर्फ एक झलक हमने सुना दी है।
1: हाँ,
0: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
1: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो समझिए सुबह मदन साहब का बजाया, दोपहर को नौशाद साहब का बजाया, दो गाने।
0: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे दिन में,
1: एक दिन में।
0: अभी तो एक शिफ्ट बची है।
1: नहीं, एक दो शिफ्टों में
0: जी,
1: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए।
0: अच्छा, सुबह की पूरी,
1: और दोपहर को 3 से 7 या 3 से 8 या 3 से 9 दूसरे प्रोजेक्टर के लिए।
0: जी जी,
1: ये हमारा उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट,
0: दो से ज्यादा नहीं,
1: दो से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे
0: जी,
1: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे और उसके बाद रात को 9 बजे बैकग्राउंड खत्म किया, 9 बजे के बाद फिर जिंगल किया, तो रात को 12-12 1-1 बजे काम करते थे।
0: और जिंगल में भी इतना सारा म्यूजिक होता था?
1: जिंगल में ज्यादा नहीं, 7-8 म्यूजिशियन 10 म्यूजिशियन बहुत हुए, लेकिन एज ए अरेंजर मैंने दिन में 7-7 गाने किए हुए।
0: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए?
1: हाँ, मतलब समझिए एक किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना वो मैंने किया हुआ है।
0: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत का?
1: जगजीत की जो फिल्म के जो हिट गाने हैं वो सारे मेरे किए हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़े गजल, वो मेरी की हुई है सारी।
0: आशा भोसले और गुलाम अली,
1: वो सारी मेरी की हुई है।
0: अरे क्या बात है, तो मिराज़े गजल में से एक गजल सुनी जाए फिर?
1: जरूर जरूर सुनिए, उसमें वायलिन सोलो बहुत है।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: आप सुन लीजिए उसको।
0: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात

0: बहुत हो रही है। और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में सात सात गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज होती
1: क्या
0: है,
1: होता है।
0: है
1: यस
0: ना? तो ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से है और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है।
1: देखिए जी, यहाँ पे कंडक्टर का चांस तो मुझे सभी चाचा ने दिया,
0: जी
1: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चांस जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू,
0: शंकर शंभू कव्वाल सर।
1: जो कव्वाल थे। मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए। मैं जी बोला, हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बेटा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी मैंने कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। बोले नहीं करो, दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
0: गजब। ये किस साल की बात होगी?
1: 60s की होगी,
0: जी
1: हाँ 60s, 65 मोस्टली, मोस्टली
0: जी
1: 65,
0: जी
1: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था। तो पहला उनका, उसके बाद में मैं, जैसे ही मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो जितने भी छोटे म्यूजिक थे, जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, बीएन बाली, ऐसे काफी लोग, छोटे छोटे म्यूजिक थे, सबने मुझे बुलाना शुरू कर दिया।
0: अरेंजर के तौर
1: हाँ,
0: पर।
1: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रुपए में दो गानों का अरेंजमेंट करना, 30 रुपए में
0: जी
1: दो गानों का अरेंजमेंट करना। तो दो गाने सुबह, दो गाने शाम, तो दिन के 60 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया तो जो म्यूजिशियन आए बजाने के लिए वो 100 रुपए दो गाने का लें, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे मिले 30 रुपए।
0: अरे अरे
1: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे। 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह। मैं कहा जी आ गया। अच्छा आ जाओ, चाय पियोगे? मैं कहा जी पी लेंगे। मैंने कहा सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रुपये दो गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रुपया ले जाता है, कोई 70 रुपया ले जाता है, कोई ऐसे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई, उन्होंने मुझे निकाल ही दिया, पैसे मांग लिए, जाओ आउट। अब बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
0: जी
1: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लोगों ने मेरे पैसे
0: बढ़ाने शुरू किए।
1: बढ़ाने शुरू किए।
0: और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारे काम
1: तो
0: शामिल
1: म्यूजिक
0: है
1: अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया,
0: जी।
1: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया,
0: हाँ
1: ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे। अब उस मेलोडी के हारमोनी, उस मेलोडी के बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया।
0: जी
1: अब पूरे म्यूजिशंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता, तो आई नेवर यूज टू ट्रस्ट एनीबॉडी। मैं मेरा बैलेंस मैं करूँगा।
0: अच्छा, तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे?
1: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग्स के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए।
0: जी
1: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना, वो वन मैन शो किया। म्यूजिटर का काम था गाना दे दो,
0: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई।
1: ट्यून बनाई, और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन की है,
0: अच्छा।
1: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिटर आते थे जिनको ताल का ही पता नहीं होता था, वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना। आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछती थी कि गाना उत्तम इसको कैसे करना है, इसको या क्या, जो भी करना है। तो मेरा वन मैन शो रहा है
0: गजब,
1: टिल हम आपके हैं कौन,
0: क्या बात है।
1: हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जो है
0: ये भी
1: ये।
0: बताना जरूरी कि ये फिल्में वो हैं जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे लेकिन अरेंजर आप थे।
1: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी, मेरे बिना कुछ वहां हिलता नहीं था। तो
0: जी
1: इसलिए मैंने ऐसे अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है। तो ये एज ए अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट रही वो मैंने आपको बताई है।
0: जी
1: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे।
0: फर्स्ट म्यूजिक, सेकंड
1: मदन साहब
0: म्यूजिक।
1: म्यूजिक खुद, मेलोडी खुद बना देते थे,
0: जी
1: नौशाद साहब हो गए, शंकर किशन, ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे, तो अरेंजर खाली लिखता था।
0: अच्छा अच्छा
1: लिखता था उसको।

0: उस थोड़ा सजाना वजाना, कॉर्ड डाला, वायलिन बजाएगा, चेलो बजाएगा या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
1: तो आप तय करते थे कि यहां इतने वायलिन होंगे,
0: हाँ,
1: मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा
0: क्योंकि म्यूजिक
1: या
0: सारा मेरा होता था ना,
1: जी,
0: तो
1: और
0: मैंने
1: वो
0: अभी,
1: पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे, उनका
0: हाँ,
1: चलन क्या होगा, वो
0: जैसे
1: सब
0: अभी
1: आप तय
0: मदन साहब
1: करते थे।
0: के रा रा रा री री तिरी री, वो बजा दिया,
1: जी
0: और वो पीस मेरा है, मैंने उसको कंपोज किया, बच गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया गलती
1: जी
0: से।
1: जी
0: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक हैं, कंपोज पीसेस हैं, मैंने प्यार का उठा लीजिए आप, हम आपके मन उठा लीजिए, मेरे अपने म्यूजिक उठा लीजिए, दिल तो पागल से, या आप पेंटर बाबू चले जाइए, जब
1: जी
0: उत्तम जगदीश थे, तो
1: जी जी
0: सारे म्यूजिक जो है, हर चीज इंटरलूड वगैरह सब मेरा बना हुआ।
1: अब जैसे हम मैंने प्यार किया की बात करते हैं, अब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उससे पहले का जो म्यूजिक है, जो फ्लूट
0: जी
1: जिस तरह से चलती है, और
0: जी
1: वो तो वो सारा आपका तैयार किया
0: सारा
1: आपने।
0: मेरा बनाया हुआ है।
1: जी
0: और उस टाइम पे वो जो पीस आया था, तारा तारा, इससे पहले ये फ्लूट कभी नहीं बजी थी इस
1: हाँ,
0: टाइम।
1: वही बात है,
0: तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि अरे फ्लूट ऐसे भी बज सकती है,
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: बहुत लोगों ने यूज किया वो
1: वो
0: इस
1: एक
0: टाइम।
1: आलाप की तरह है प्रॉपरली जो आता है।
0: बिल्कुल।

0: यहाँ से वो कबूतर जा जा में जो पूरा रिदम है।
1: हाँ
0: मेरे रंग में रंगने वाली के पहले का जो ग्रैंडियोर है
1: हाँ।
0: वो बहुत कमाल है।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ आज मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि जैसे आदमी अपने घर में नहीं रहता, अपने घर की आदत में रहता है। वही खिड़की, वही दरवाजा, वही सड़कें, वही चेहरे, और धीरे धीरे जिंदगी के रंग इतने परिचित हो जाते हैं कि उनमें नया कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर किसी दिन हम घर से निकलते हैं एक अनजान सड़क पर, किसी ऐसे शहर में जहां कोई भी हमें नहीं पहचानता, किसी पहाड़ के सामने जिसकी ऊंचाई का अंदाजा तस्वीर देखकर नहीं लगाया जा सकता, किसी ऐसी नदी के किनारे जहां पानी शायद हमसे कुछ कह रहा होता है, और तब समझ में आता है कि दुनिया हर रोज की जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ी है। और इसी भावना को चरितार्थ करने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर दोस्तों, पर्यटन क्या सिर्फ घूमने मात्र का नाम है? शायद नहीं। पर्यटन दरअसल अपने जाने पहचाने संसार से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो सिर्फ जगह नहीं बदलती, हमारे भीतर की कुछ खिड़कियां भी खुलती हैं। भारत को ही लीजिए, एक तरफ हिमालय है तो दूसरी तरफ समुद्र, कहीं रेगिस्तान की रेत है तो कहीं घने जंगल, कहीं मंदिरों की घंटियां हैं तो कहीं मस्जिद की आजान, कहीं किसी गांव की सुबह चूल्हे के धुएं से शुरू होती है तो कहीं किसी महानगर की सुबह हॉर्न की आवाज से। भाषाएं बदलती हैं, खाने का स्वाद बदलता है, कपड़े बदलते हैं, लोगों के रहने का ढंग बदलता है, लेकिन इन तमाम बदलावों के बीच एक चीज सबसे समान रहती है, वो है इंसान। शायद यात्रा हमें यही सबसे बड़ा सबक देती है कि दुनिया में रहने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य की खुशियां और उसकी परेशानियां बहुत अलग नहीं होती। किसी दूसरे शहर में जाकर जब हम किसी अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं और वो मुस्कुरा के बताता है, तो उस क्षण कोई भाषा बीच में नहीं रहती, सिर्फ इंसानियत रह जाती है। दोस्तों, पर्यटन का एक दूसरा पहलू है और वो है रोजगार। जिस जगह हम कुछ घंटों के लिए घूमने जाते हैं, वहां किसी के लिए वही जगह पूरी जिंदगी है। होटल में काम करने वाला व्यक्ति, टैक्सी चालक, स्थानीय गाइड, छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाला परिवार, हस्तशिल्प बनाने वाला कारीगर, पर्यटक के लिए ये सब यात्रा का हिस्सा है, लेकिन उनके लिए पर्यटन रोजी रोटी का साधन है। और इसलिए दोस्तों, जब हम किसी जगह पर घूमने जाएं, तो वहां सिर्फ पैसा खर्च करके वापस ना लौटें, वहां के लोगों का सम्मान भी साथ लेकर लौटें। और प्रकृति तो शायद हमसे बहुत कम मांगती है, बस इतना कि जो उसने दिया है उसे हम कूड़े में न बदलें। किसी पहाड़ पर जाकर प्लास्टिक की बोतल छोड़ाना, किसी नदी में कचरा फेंक देना, किसी ऐतिहासिक इमारत की दीवार पर अपना नाम लिख देना, यह यात्रा नहीं, हमारी असावधानी की निशानी है। किसी जगह की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना आसान है, लेकिन उसे वैसा ही सुंदर छोड़कर आना, शायद यही असली पर्यटन है। आज युवा देश और दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा देख सकते हैं। कम साधनों में भी लोग नए शहरों, गांव और प्रकृति को देखने निकलते हैं, लेकिन यात्रा का उद्देश्य सिर्फ तस्वीरें जमा करना नहीं होना चाहिए। कभी किसी संग्रहालय में आधा घंटा बिताइए, कभी किसी पुराने किले की दीवार को छूकर सोचिए कि कितनी पीढ़ियां यहां से गुजरी होंगी, किसी नदी के किनारे कुछ देर बिना मोबाइल के बैठिए, किसी छोटे शहर की चाय की दुकान पर बैठकर वहां के लोगों की बातें सुनिए, शायद तब यात्रा आपको कुछ देगी जिसे कोई ऑनलाइन तस्वीर नहीं दे सकती। क्योंकि दोस्तों, मंजिल की तस्वीरें मोबाइल में रह जाती हैं, लेकिन यात्रा का अनुभव आदमी के भीतर रह जाता है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: युवावाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। कार्यक्रम के साथ आज मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, कुछ आवाजें कानों तक नहीं पहुंचती, फिर भी सुनाई देती है। माँ की आंखों में चिंता तो वो बिना कुछ कहे भी सुनाई देती है। किसी दोस्त की चुप्पी में छिपी उदासी सुनाई देती है। किसी बच्चे के मुस्कान में छिपा भरोसा सुनाई देता है। शायद सुनना हमेशा कानों का काम नहीं होता। दोस्तों, आज यानी कि 27 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस मना रहे हैं। ये दिवस हर वर्ष सितंबर माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ये दिन हमें बधिर व्यक्तियों के जीवन, अधिकारों, क्षमताओं और समाज में उनकी समान भागीदारी के बारे में सोचने का अवसर देता है। दोस्तों, हमारी दुनिया आवाजों से भरी हुई है। घड़ी के टिक टिक, सड़क का शोर, स्कूल की घंटी, रेडियो पे बजता संगीत, हमने सुनने को इतना सामान्य मान लिया है कि कभी कभी यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति इस दुनिया को एक ही तरह से नहीं सुन सकता। लेकिन क्या आवाज का न सुनाई देना जीवन के बाकी रंगों को भी मिटा देता है? शायद नहीं। एक बधिर व्यक्ति की दुनिया शांत हो सकती है, लेकिन वह खाली नहीं होता। उसमें भावनाएं होती हैं, सपने होते हैं, प्रतिभा होती है, मेहनत होती है और सबसे बढ़कर जीने की वह इच्छा होती है जो हम सब के भीतर होती है। सांकेतिक भाषा को समझिए। हाथ चलते हैं, चेहरा भाव बदलता है, आंखें संवाद करती हैं और बिना आवाज के भी एक पूरा वाक्य जन्म ले लेता है। यह दृश्य हमें शायद संवाद का सबसे सुंदर अर्थ समझाता है। बात कहने के लिए आवाज का जरूरी होना नहीं है, लेकिन बात को समझने के लिए संवेदना जरूरी है। कई बार समाज किसी व्यक्ति को उसकी कमी से पहचानता है, वह व्यक्ति सुन नहीं सकता और बस हमने उसकी पहचान वहीं समाप्त कर दी। लेकिन वो कर क्या सकता है, यही पूछना भूल जाते हैं। किसी बच्चे के कान सुन नहीं सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके सपने भी बहरे हैं। वह पढ़ सकता है, सीख सकता है, खेल सकता है, कला कर सकता है, तकनीक सीख सकता है।

अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है और अपने परिवार और समाज के लिए अपना योगदान भी दे सकता है। जरूरत है तो सिर्फ अवसर की, और युवाओं के सामने आज एक बड़ी जिम्मेदारी है ऐसा समाज बनाने की जहां किसी व्यक्ति को अपनी शारीरिक स्थिति के कारण अकेला महसूस ना करना पड़े। अगर हमारे आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सुनने में परेशानी होती है तो हमें उसके साथ अधीर होने की जरूरत नहीं है। धीरे बोलिए, चेहरे की तरफ देखकर बात कीजिए, जरूरत हो तो लिखिए, संकेतों का इस्तेमाल करिए, और सबसे जरूरी बात, उसे यह महसूस मत होने दीजिए कि वह हमसे कम है, क्योंकि किसी व्यक्ति की गरिमा उसके सुनने की क्षमता से तय नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं ना कि उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए, लेकिन शायद हमें इसका अर्थ थोड़ा और बड़ा करना होगा। हर व्यक्ति की आवाज का मतलब केवल उसका बोलना नहीं है, उसके इच्छा भी आवाज है, उसकी प्रतिभा भी आवाज है, उसकी मेहनत भी आवाज है, और उसकी उपलब्धि भी आवाज है, और कभी कभी उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। विश्व बधिर दिवस हमें इसी खामोशी को समझने की संवेदना देता है। आइए हम ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां संवाद केवल आवाज से नहीं, समझ से हो, जहां किसी के हाथों की भाषा भी उतनी ही सम्मानित हो जितनी हमारी बोली हुई भाषा, और जहां किसी व्यक्ति के बारे में यह सवाल ना हो कि उसमें क्या कमी है, बल्कि यह सवाल हो कि उसके भीतर संभावनाएं क्या हैं।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन

0: और परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान। युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। कार्यक्रम के साथ आज मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, नदी की आदत होती है वह रुकती नहीं। पत्थर मिलता है तो रास्ता बदल लेती है, ढलान मिलती है तो बहने लगती है, किनारा मिलता है तो उसे छूती हुई आगे निकल जाती है। और शायद इसी वजह से नदी सिर्फ पानी नहीं लगती, जिंदगी लगती है। सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस भी मनाया जाता है। वर्ष 2026 यानी इस वर्ष ये दिन आज 27 सितंबर को मना रहे हैं। यदि हम भारत की सभ्यताओं को देखें तो नदियां मात्र भूगोल का हिस्सा नहीं है। नदियों के किनारे शहर बसे, खेती विकसित हुई, व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां बनी। गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो या फिर ब्रह्मपुत्र, हर नदी अपने साथ एक पूरा संसार लेकर चलती है। नदी में केवल पानी नहीं बहता, उसमें मछलियों का जीवन बहता है, किसानों की उम्मीद बहती है, शहरों की जरूरतें बहती हैं और किनारे बसे लोगों की रोजी रोटी भी बहती है। हम नदी के किनारे खड़े होकर उसकी खूबसूरती देखते हैं और फिर उसी पानी में वही चीज डाल देते हैं जिसे हम अपने घरों में नहीं देखना चाहते। ये विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है। जिस पानी के बिना हम कुछ दिन कुछ घंटे नहीं रह सकते, उसी पानी को गंदा करने में हमने कुछ सेकंड भी नहीं लगाया। नदी की परेशानी केवल पानी के प्रदूषण की नहीं है, उसके रास्ते बदलते हैं, किनारे सिकुड़ते हैं, प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होती है, जलीय जीवों का संसार प्रभावित होता है। और जब नदी कमजोर होती है तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। आज युवाओं के सामने एक बड़ा अवसर है। पर्यावरण की बातें केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय उसे अपने व्यवहार में उतारने का। दोस्तों, पर्यावरण का सबसे बड़ा सच ये है कि उसका कोई अलग घर नहीं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वही पर्यावरण है, हम जो पानी पीते हैं वही पर्यावरण है, और जिस मिट्टी पर चलते हैं वही पर्यावरण है। इसलिए नदी की चिंता किसी दूर बैठे व्यक्ति की चिंता नहीं, ये हमारी अपनी चिंता है। कभी किसी नदी के किनारे अकेले बैठकर देखिए, आपसे वो कुछ कहेगी नहीं, बस शांति से बहती रहेगी। शायद उसकी खामोशी में यही सवाल होगा, तुमने मुझसे क्या लिया और मेरे लिए क्या छोड़ा। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं विद्यालय से समाज तक स्वच्छता से संस्कृति का विकास, इस विषय पर केंद्रीय विद्यालय चौपन के प्रधानाचार्य अमरनाथ से सचिन कुमार वर्मा की ये भेंट वार्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, स्वच्छता हमारे स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर समाज की आधारशिला है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ व्यवहार को जन जन की आदत बनाने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा 6.0 का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान

0: ज्ञान केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने, कचरे के उचित निस्तारण तथा स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का संदेश भी देता है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अमरनाथ जी। आप प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय चौपन के। सर, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: श्रोताओं, आज हमारा विषय है विद्यालय से समाज तक स्वच्छता की संस्कृति का विस्तार। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि स्वच्छता को केवल अभियान न मानकर दैनिक जीवन की आदत और संस्कार बनाने में विद्यालय की क्या भूमिका है?
1: धन्यवाद सर, आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में विद्यालय बच्चे का दूसरा घर होता है। यहीं से उसके व्यवहार, आदतों और जीवन मूल्यों की नींव मजबूत होती है। यदि हम चाहते हैं कि स्वच्छता बच्चों के जीवन का स्थायी हिस्सा बने, तो सबसे पहले हमें स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। बच्चे केवल सुनकर नहीं बल्कि देखकर और करके अधिक सीखते हैं। इसलिए शिक्षक और विद्यालय के अन्य कर्मचारी स्वयं स्वच्छता का पालन करें तो उसका सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों पर अधिक पड़ता है। दूसरी बात है स्वच्छता को विद्यालय की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना। प्रार्थना सभा में स्वच्छता के महत्व पर चर्चा करना, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना, भोजन से पहले हाथ धोना और कूड़े को उचित डस्टबिन में डालना जैसी छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बच्चों के व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों को यह समझाना कि स्वच्छता केवल साफ दिखाई देने के लिए नहीं है। स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और जिम्मेदार नागरिक बनने से भी जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा सर, विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए विद्यालय में किस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं?
1: जी, जब बच्चे स्वयं किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो उसका प्रभाव अधिक स्थायी होता है। विद्यालय में कई रोचक और उपयोगी गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। सबसे पहले बाल संसद और स्वच्छता मॉनिटर जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से बच्चों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे उसमें नेतृत्व और अनुशासन की भावना विकसित होती है। दूसरा, श्रमदान और स्वच्छता अभियान के माध्यम से विद्यार्थी अपने विद्यालय परिसर, खेल के मैदान और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने में योगदान दे सकते हैं। इससे उनमें श्रम के प्रति सम्मान और अपने विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना पैदा होती है। इसके अलावा पोस्टर निर्माण, स्लोगन लेखन, निबंध, भाषण, चित्रकला और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकती हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे रचनात्मक तरीके से स्वच्छता का संदेश देते हैं। नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी माध्यम है। बच्चे जब स्वयं स्वच्छता से जुड़े संदेशों को प्रस्तुत करते हैं तो वे विषय को और अच्छी तरह समझते हैं। साथ ही इको क्लब, मिशन लाइफ के माध्यम से गीले और सूखे कचरे को अलग करना, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों का व्यवहारिक अनुभव दिया जा सकता है।
0: बिल्कुल सर, अब बच्चे जो होते हैं वही हमारी अगली पीढ़ी है और हम अपनी पीढ़ी को जो देते हैं उसकी जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा पाए उसके लिए जरूरी है कि उनकी अच्छी आदत लगाई जाए। तो सर, ये बच्चे अपने परिवार और आसपास के समाज में स्वच्छता का संदेश पहुंचाने में किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं?
1: देखिए, बच्चे बदलाव के बहुत प्रभावी दूत बन सकते हैं। जो विद्यालय में सीखते हैं उससे अपने घर और आसपास के लोगों तक बहुत सहज तरीके से पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे अपने परिवार के सदस्यों को कचरा इधर उधर न फेंकने, पानी की बर्बादी रोकने और घर में गीले तथा सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वे अपने माता पिता से यह भी कह सकते हैं कि बाजार जाते समय कपड़े का थैला साथ रखें और अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग न करें। इसके अलावा बच्चे अपने मित्रों और पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता रैली, जागरूकता अभियान, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे स्वयं उदाहरण बने। यदि वे सड़क पर कचरा नहीं फेंकते, पानी व्यर्थ नहीं बहाते और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखते हैं तो दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। इस तरह एक बच्चे की अच्छी आदत धीरे धीरे पूरे परिवार और पूरे समाज तक पहुंच सकती है। हमने अपने विद्यालय में स्वच्छता की आदत को लेकर एक अच्छी पहल शुरू की है। विद्यालय के अंतिम कालांश में हम 5 मिनट का समय विद्यार्थियों को सफाई अभियान में लगाते हैं, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों साथ मिलकर के संबंधित कक्षा की सफाई करते हैं और इस प्रकार बच्चे सुनिश्चित करते हैं कि विद्यालय छोड़ने से पूर्व उनकी कक्षा बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन हो।
0: नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है सर। मतलब आप जहाँ से जा रहे हो और वहाँ अच्छे से सफाई करके जाएं और फिर वहीं अगले दिन आकर के आपको बैठना हो और पढ़ाई करना हो तो अलग ही एक अनुभव होता है और एक अच्छी आदत है।
1: जी सर, इसका बड़ा सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है।
0: बिल्कुल सर। अच्छा सर, स्वच्छ विद्यालय परिसर बनाए रखने में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की सामूहिक जिम्मेदारी को आप किस रूप में देखते हैं?
1: देखिए सर, मैं इसे एक साझी जिम्मेदारी के रूप में देखता हूँ। स्वच्छ विद्यालय बनाने के लिए इन तीनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शिक्षकों की भूमिका है कि शिक्षक केवल बच्चों को निर्देश न दें बल्कि स्वयं भी स्वच्छता और अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत करें। साथ ही विद्यालय में स्वच्छ पेयजल, साफ शौचालय और पर्याप्त डस्टबिन जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और उचित उपयोग पर भी ध्यान दें। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका विद्यार्थियों की है। उन्हें विद्यालय को अपना समझना चाहिए। दीवारों और डेस्क पर नहीं लिखना, कचरे डस्टबिन में डालना, शौचालय का सही उपयोग करना और विद्यालय की संपत्ति की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। तीसरी भूमिका अभिभावकों की है। बच्चा विद्यालय में जो सीखता है वही वातावरण उसे घर पर भी मिलना चाहिए। इसलिए अभिभावकों को भी बच्चों की अच्छी आदतों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और घर में स्वच्छता का वातावरण बनाए रखना चाहिए। जब शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक मिलकर काम करते हैं तभी स्वच्छता केवल एक नियम नहीं रहती बल्कि विद्यालय की एक संस्कृति बन जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है सर। तो चलते चलते सर, स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान विद्यार्थियों और आम लोगों के लिए आपका क्या संदेश है ताकि स्वच्छता की यह भावना अभियान के बाद भी निरंतर बनी रहे?
1: इसके लिए मेरा संदेश बहुत सरल है। स्वच्छता को किसी अभियान या कुछ दिनों तक सीमित न रखें। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके लिए एक छोटी सी आदत बदलने का संकल्प ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्थान पर कभी कचरा नहीं फेंकेंगे।
0: बिल्कुल।
1: यदि आसपास डस्टबिन नहीं है तो कचरे को अपने बैग में रखेंगे और उचित स्थान पर ही फेंक डालेंगे। दूसरी बात, स्वच्छता की शुरुआत हमेशा अपने आसपास से करें। अपने घर, अपनी कक्षा, अपना विद्यालय और अपना कार्यस्थल, इसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी स्वयं लें। तीसरी बात, अभियान समाप्त होने के बाद भी विद्यालयों और संस्थानों में समय समय पर स्वच्छता की समीक्षा और जागरूकता गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। याद रखिए, स्वच्छता एक दिन का कार्यक्रम नहीं है बल्कि रोज की जिम्मेदारी है। जब हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें लगातार बनी रहती हैं तभी उनका बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। तो छोटी छोटी आदतें डाल करके स्वच्छता के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं और अपने समाज और देश को खूबसूरत बना सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो श्रोताओं, आज की बातचीत से यह स्पष्ट है कि स्वच्छता की शुरुआत स्वयं से और अपने आसपास से होती है। विद्यालय बच्चों को स्वच्छता के संस्कार देने का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इन संस्कारों को परिवार और समाज तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के प्रति सजग रहे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे तो स्वच्छता की संस्कृति को व्यापक रूप दिया जा सकता है। इसी संदेश के साथ आज की इस विशेष बातचीत से हमें विदा लेने की अनुमति दीजिए। इस विषय पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दी अनुमति। सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी ओबरा से। नमस्कार।

अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के हम ओबरा केन से बोल रहे हैं। अगले क्रम में प्रस्तुत श्रोताओं कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति आशीष वर्मा की है और

0: प्रस्तुत करता है सचिन कुमार वर्मा।
1: हेलो, दिल की धड़कन, बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस, हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो
1: हेलो,
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला, जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर।
1: हाँ सर नमस्ते जी।
0: जी कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है, परिचय दें।
1: गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
0: अपने बारे में बताएं सर, क्या करते हैं?
1: मैं रिटायरमेंट सर।
0: कहाँ से?
1: महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में 2024 में रिटायर हुआ।
0: अच्छा
1: 25 तो खाली रहा, 26 में फिर एक प्राइवेट कंपनी
0: जी। तो एक कंपनी से रिटायरमेंट के बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए आपको कैसा, अभी कैसा महसूस हो रहा है और क्या नया अनुभव आपको लग रहा है?
1: नया कुछ नहीं सर, इतना ये गवर्नमेंट का अलग है, प्राइवेट का अलग है, टाइम ज्यादा रहता है, 2 घंटे ज्यादा रहता है।
0: यानी आपको थोड़े 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है यहाँ?
1: हाँ, एक्स्ट्रा काम करना।
0: जी बिल्कुल। और आपका काम का माहौल कैसा है, आपके जो कुलिक्स हैं जो जिनके साथ आप काम करते हैं उनका कैसा सपोर्ट मिलता है आपको?
1: मैंने सपोर्ट तो सर ये आंध्र प्रदेश के लोग है, मैं महाराष्ट्र का हूँ
0: जी,
1: उनमें हमारे में जमीन आसमान रहता।
0: अच्छा,
1: और अपना जो काम मैं कर लेता हूँ।
0: बहुत अच्छा, बिल्कुल। अब हम काम करने निकले हैं तो हमारा पहली प्राथमिकता हमारी काम की ही होनी चाहिए, और हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए सर आज क्या पसंद है, क्या सुनवा दें?
1: आज सर मुझे हिमालय की गोद में गाने में सर कौन सा जो अच्छा है वो सुनवा दीजिए।
0: अच्छा, इस फिल्म से आपको कोई भी एक अच्छा सा गीत सुनवा देंगे, ठीक है सर?
1: मित्रों का नाम लेता हूँ।
0: हाँ,
1: हमारे तुकाराम जाधव जी, धीरज राबरी, सुनील जाधव, केसर सिंह राजपूत, राजेंद्र गंगवार, राम पहले यादव जी।
0: ठीक है ठीक है, आपको और आपके दोस्तों को सुनवाते हैं हिमालय की गोद में फिल्म से ये एक अच्छा सा गीत।

0: हेलो सर जी, नमस्कार
1: जी। नमस्ते, कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब से बोल रहे हैं ना सर?
0: सर जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
1: कैसे हैं?
0: बहुत मजे में सर, आपसे बात हो जाती है तो और भी आनंद में हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके यहाँ का मौसम कैसा है? बारिश वगैरह हो रही है? कैसा मौसम है?
0: बारिश तो सर इस बार हमारे पंजाब में बहुत कम ही हुई है। बस यह कि अभी मौसम जैसे अपने समय के हिसाब से तब्दील होना होता है।
1: हाँ।
0: तो थोड़ा थोड़ा सुबह शाम ठंडक हो गई है और दोपहर को तो अभी भी काफी गर्मी होती है। मौसम बदलेगा ही बदलेगा आखिरकार तो।
1: हाँ, होता भी है कि एक जैसा मौसम हमेशा कहीं होता नहीं। कहीं धूप है तो कहीं छाव है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रंग है, मिलकर ही इंद्रधनुष बनता है। मौसम है ये जीवन का आईना ही है, जीवन भी इसी तरह ही चलता रहे।
1: सही बात है सर, जीवन भी ऐसा ही है, इंद्रधनुषी रंग है। जो भी रंग हमें ईश्वर ने दिए हैं उनको हम अपनाएं, प्यार से जिए। जीवन के हर पहलू बहुत खूबसूरत और कीमती है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, हर रंग में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, हर रंग में ही एक अपना अपना आनंद मिलेगा।
1: बिल्कुल सर, बताएं सर आज क्या पसंद है?
0: बड़ा ही रोमानी सा गीत है, फिल्म इश्क पर जोर नहीं।
1: सच कहती है दुनिया।
0: आपने मेरे मुंह से छीन लिया। तो मैं अभी इसकी दो लाइनें तरन्नम में बताऊंगा सर।
1: जी जरूर सर।
0: सच कहती है दुनिया इश्क पे जोर नहीं, ये पक्का धागा है ये कच्ची डोर नहीं। इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत ही प्यारा गीत भी है ये। हमेशा की तरह जैसे आपकी फरमाइश बहुत अच्छी होती है और अब गाते तो खैर हैं ही लाजवाब, तो चलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को महसूस करते हुए आपकी पसंद का ये गीत सुन लेते हैं लता जी की आवाज में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: जुड़े रहिए आकाशवाणी ओबरा से जब भी आपको मौका मिले सर।

0: जी नमस्ते साहब जी।
1: जी नमस्ते सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताएं अपने बारे में।
0: ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया।
1: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं?
0: जी मैं बहुत बढ़िया हूँ और रिमझिम रिमझिम बारिश का आनंद ले रहा हूँ। यद्यपि अब इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी प्रकृति की देन है तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं है।
1: बिल्कुल सर, और हम सभी जो है इस रिमझिम मौसम की जो बारिश है इसका आनंद कह लीजिए या जो कुछ है उसी का आनंद लेते हुए अपने आप को आनंदित रखने का प्रयास भी कर रहे हैं।
0: भाई इनके साथ तो करना पड़ेगा, हम और आप तो एक दूसरे से समझौता कर सकते हैं, इनके साथ क्या कर सकते हैं?
1: इनके साथ तो बस यही है कि सहूलियत रखते हुए और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ही बस आगे बढ़ सकते हैं।
0: बल्कि आपने सेहत का नाम लिया तो आज वाकई कुछ मौसम परिवर्तन से कुछ हल्का गुलाबी सरदर्द भी है।
1: हाँ जी,
0: और जो कहना चाहिए कि वो सर्दी की वजह से उनकी जुखाम हो गया या कुछ ऐसा हो, और लेकिन आपकी बात सही है, हम इस पे बिल्कुल ध्यान रखे हैं और अपने आप को बचाने का तरीका।
1: बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करने की आवश्यकता है, बस खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें, पानी सही लें और अपने आसपास साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और बताइए आप कैसे हैं और आपका क्या काम चल रहा है अभी सर?
0: बिल्कुल मैं बहुत बढ़िया हूँ, अपने दुकान पर बैठा हूँ। आपके यहाँ अब की बार मेरा काफी दिनों बाद फोन लगा
1: जी,
0: है। आज हमने चुन रखी है फिल्म आप आए बाहर आई
1: जी।
0: तेरी याद सताती है, नींद नहीं आती है रातों में।
1: तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा।
0: ओ सजना
1: जी सर,
0: तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको सुनवाएंगे।
1: ये तो सर हम आपको सुनवाएंगे ही सुनवाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए।

0: जी दुद्धी से रमेश यादव बोल रहे हैं। रिकेट
1: जी, रमेश जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं रमेश?
0: बस ठीक है सर, बढ़िया है।
1: अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं?
0: मैं सर वकालत करता हूं। सर 2022 से शुरुआत हुई है हमारी, उसके पहले मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था 2012 से करीब।
1: बहुत बढ़िया। तो फिर पत्रकारिता से वकालत की तरफ मुड़ना क्या ऐसा रहा कि आपने ये सेलेक्ट किया?
0: ये ऐसा है कि पत्रकारिता में कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें कानूनी रूप से या जो संविधान की जो धाराएं हैं, किसी मामले को जब लिखना रहता है तो उसमें भी कानूनी बातों को कहीं ना कहीं जिक्र करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि पत्रकार जो होता है वो जब किसी व्यक्ति की खबर लिखता है या डॉक्टर की खबर लिखता है तो उसको एक डॉक्टर बन के सोचना पड़ता है।
1: जाहिर सी बात है,
0: कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसे मदद जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, तो उसके बारे में बेहतर समझ के लिए मुझे लगा कि नहीं, कानून की भी जानकारी बहुत जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी सोच कि पीड़ित व्यक्ति का संज्ञान ले रहे हैं, तो कभी कभी मजबूरियां हो जाती है कि काश हम कानूनी रूप से भी जानकारी रखते तो हम इसकी कुछ और तरीके से भी मदद कर सकते थे।
0: जी बिल्कुल।
1: और
0: जी।
1: इसके अलावा फिर जब कुछ फुर्सत के पल मिलते हैं, ऐसे बारिश वाले मौसम होते हैं, तो फिर जिंदगी से क्या ढूंढते हैं आप?
0: बस वही मनोरंजन की चीजों को लेते हैं, कुछ पुराने जो गीत हैं उसको सुनते रहते हैं, कुछ जो जनरल चीजें हैं सामान्य ज्ञान की, उससे में रुचि हमारी रहती है।
1: बहुत बढ़िया। तो फिर कोई एक ऐसा गीत याद आ रहा हो जो अभी हम आपको सुनवा दें?
0: जी वो पुराने गीत सुनाता का कोई भी अच्छा गीत हो तो सुनवा दिया जाए।
1: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। और अब आपकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज में ये गीत।

0: तो श्रोताओं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में ये था आपसे बातचीत का आज का सफर, जिसे आपके लिए पेश किया आशीष वर्मा ने। गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: अभी आप सुन रहे थे हेलो फरमाइश कार्यक्रम, प्रस्तुति आशीष वर्मा की थी और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केन से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री कहले कि जनगणना का पहला फेरा सज्जो राज्य में पूरा हो गई हो और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारन का आंकड़ा दर्ज हो चुका हो।
0: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री प्रतापगढ़ में आंवला उत्पादनों के जिक्र कहले और कहले कि आंवला प्रतापगढ़ के एगो मजबूत पहचान देले हो।
0: प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मन की बात में प्रतापगढ़ के आंवला और ऐसे समृद्धि का नया राह बना रहल मातृशक्ति के जिक्र कैले पर प्रधानमंत्री का आभार जताउले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 बरिस पूरा कैले हुए। इ जतरा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जुड़ल रहले के हो। सेवा और सुशासन के भावना से प्रेरित सरकार 2047 ले विकसित भारत बनौले के ओर लगातार काम कई रहल हो। ये मौका पर खास श्रृंखला में आज मेक इन इंडिया योजना पर एगो रिपोर्ट।
2: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
3: आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। मुझे इस बात का संतोष कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है।
2: काशी के बुनकर और कई पुरस्कारों से सम्मानित मोहम्मद यासीन ने बताया कि मेक इन इंडिया पहल से काशी की हस्तशिल्प और बनारसी साड़ियों को देश विदेश में पहचान और बाजार मिला है।
4: हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को काफी बढ़ावा मिला है। इसकी वजह से बनारस में काफी टूरिस्ट वगैरह भी आ रहे हैं जो यहाँ की बनाई हुई साड़ियाँ और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करते हैं।
2: पर्यटन के साथ ही वाराणसी आज बनारसी साड़ियों के जरिए मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बन रही है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज SIR के लेके विपक्ष पर लगातार भरम फैलाउले के आरोप लगौले। लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता में वहां के कहली कि यह मुद्दा पर तीनों चुनाव आयुक्त एक के साथ स्थिति साफ कह देले हमें बकर कांग्रेस आउरियो विपक्षी दल की ओर से चुनाव आयोग जैसन संवैधानिक संस्था के कटघरा में खड़ा कई दुर्भाग्यपूर्ण हो। पूर्वोत्तर रेलवे आवे वाला त्योहार के देखत बनारस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के बीच 17 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच दोनों ओरी से 77 फेरा में स्पेशल ट्रेन चलौले के फैसला कैले हो। गोरखपुर से सकुर बस्ती दिल्लियों के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलावल जाई। मौसम विभाग प्रदेश का पूर्वी आ पश्चिमी इलाकन में अगला 3 दिन ले गरज चमक के साथ बौछार पड़ने के संभावना जतौले हो। विभाग अगला 3 दिन में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री और अधिकतम 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के अनुमान जतौले हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
5: FM 100 2.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आप सबको जानकारी दे दें आज की

पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

रात्रि 10 बजे का समय होगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का। यह कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

श्रोताओं, एक बार हम पुनः आप सबको बता दें कि रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा।

श्रोताओं, ये थी हमारी कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो अब समाप्त हुई। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे ग्रामीण भी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। नैना तोहू के राम राम हो, कही सुनाओ का हाल चाल है।
1: देखा भैया आप हो के राम राम। देखा हाल चाल तो अपन सब ठीक ही बा। देखा मौसम में भी बदलाव रहल है। तो देखा अपन जब मौसम का बात होला तो कहल जला कि जब मौसम का

0: उतार चढ़ाव रहला तो अपने स्वास्थ्य पे जरूर असर डालला।
1: बिल्कुल। आ देखें अब जौन बात धीरे धीरे अपने तापमान में वृद्धि हुई, काहे से कि जौन अर्णव चक्रवात रहल हा, बंगाल के खाड़ी में एक निम्न दबाव बना रहल हा, अब धीरे धीरे आज के बाद उकर असर जौन बा वो समाप्त हो गल। अपने पंच भैया लोगन बदे थोड़ा राहत का भी माने बात बा, आगे आवे वाले समय में बड़ी अच्छी धूप भी निकली, तापमान में भी वृद्धि हुई। अब देखें जब तापमान बढ़ी ना तो निश्चित बा के कुवार का महीना बा, तो कुवार के महीना में तमाम तरह का रोग व्याध जौन बाया हम लोगन के सतावन, कहे से कि कहल जाला कि कुवार में जौन कन्या रास होले ओकर धूप बहुत तेज होले, आ जेके वो धूप लग गई तो समझ लें कि बीमार होके पड़ने पड़ना बा। एकरे साथे साथे थोड़ा सा हम लोगन के कुवार के महीना में अपने खान पान पर भी ध्यान देवे के चाहिए, काहे से कि जौन बासी तिवासी भोजन बा वो हम लोगन के न कर के चाहिए। अगर कहीं बाजार में कोनो खुलल चीज बा तो वो न खाए के चाहिए, कैसे कि मेला ठेला कभी समय माने कुवार के महीना में आ जाला तो अपन बचवा लोगन थोड़ा सा जो चटपटा चीज बा पर ज्यादा आकर्षित होना तो इकुल से हम लोगन के बचे के चाहिए। एक चीज और हम कहल चाहब कि देखें आज 27 सितंबर है, अब प्रत्येक बरिस आज के दिन विश्व पर्यटन दिवस जौन बा वो मनावल जाला। ये दिवस का उद्देश्य ई बा कि पर्यटन के महत्व के बारे में लोगन के जागरूक कयल जाए, ई बतावल जाए कि पर्यटन सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक और आर्थिक विकास में कितना महत्वपूर्ण भूमिका
0: निभावला
1: अदा कराला। देखें विश्व पर्यटन दिवस का स्थापना संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा कैल गई रहे, एकर शुरुआत जौन रहल वर्ष 1979 में महासभा अधिवेशन में 27 सितंबर के विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनावे का निर्णय लेवल गए रहे। अब पहली बार ई दिवस जौन बा 1980 में मनावल गए रहे, 27 सितंबर तिथि ए बदे चुनल गई काहे से कि यही दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन के संविधान में अपनावल गया रहा, जौने से कि वैश्विक पर्यटन के विकास का दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर गया रहा। देखें अगर पर्यटन का हम लोगन बात करी तो बड़ा एकर महत्व माने समझ में आवला पर्यटन का, कहे से कि पर्यटन कोनो भी देश का अर्थव्यवस्था के मजबूत बनावला, विदेशी मुद्रा अर्जित कैले का महत्वपूर्ण एक स्रोत है, होटल परिवहन हस्तशिल्प रेस्तरां और अन्य सेवाओं में रोजगार का अवसर भी ऐसे हम लोगन के मिला ला। एकरे साथे साथे पर्यटन उद्योग लाखन लोगन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्रदान कराला, स्थानीय युवा और छोट व्यवसायी जौन बा उनके आमदनी का अवसर भी ऐसे प्राप्त होला। एकरे साथे साथे अगर देखल जाए तो जौन विभिन्न देश का संस्कृति बाई और लोग एक दूसरे के समझत न बुझा ना उसे जान पहचान कराना आपसी एक माने हस्तांतरण भी होला अपने लोक संस्कृति का, एकरे साथे साथे पारंपरिक कला संस्कृत और विरासत के भी बढ़ावा मिला। देखें जिम्मेदार पर्यटन प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता के संरक्षण के भी प्रोत्साहन मिला ला, ऐसे लोग प्रोत्साहित होना या राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण और ऐतिहासिक स्थल का जो संरक्षण बा उनमें भी सहायता मिलल है। कहे से कि देखें भारत में अपन विविध संस्कृति बा प्राचीन सभ्यता बा ऐतिहासिक स्मारक बा धार्मिक स्थल बा और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व का जौन प्रमुख पर्यटन देश मा उनमें से एक अपन भारत भी बा। कहे से कि भारत में अपने देश में घूमे का तमाम ऐसा स्थान बा जहाँ लोग घूम सकाना, जैसे ताजमहल बा आगरा, वाराणसी काशी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें लोग और माई गंगा का
0: अस्मार
1: घाट जौन बा वो घूमें और उनकर आरती देखें। जयपुर लोग जाना, खजुराहो जाना, गोवा का समुद्र तट पर घूमे बदे जाना, कश्मीर का जौन वादी वाइन वहां जाना, और वर्तमान समय में अयोध्या और प्रयागराज। प्रयागराज तो प्राचीन तीर्थ स्थल बा, तीर्थन का तीर्थ है संगम। आ देखे महाकुंभ लगा रहा था, कहाँ कहाँ का लोग गंगा स्नान करे नहीं है ना। देखे ऐसे आर्थिक अर्जन भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। आज का पर्यटन के साथ पर्यावरण संरक्षण के जोड़ल आवश्यक बा, कहे से कि प्राकृतिक संसाधनन का संरक्षण कर स्थानीय संस्कृति का सम्मान, स्थानीय समुदाय के लाभ पहुंचावल, और जो प्रदूषण और अपशिष्ट माया ओके कम करे का प्रयास हम लोगन के जरूर करे के चाहिए। अब पर्यटन से संबंधित सेमिनार कार्यशाला का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी लगावल जाए चाहिए। पर्यटन स्थल का स्वच्छता और संरक्षण अभियान चलावल जाए। लोगन के जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन बदे प्रेरित कयल जाए,
0: कयल जाए।
1: तो निश्चित बा कि अपन पर्यटन के बढ़ावा मिली। देखें विश्व पर्यटन दिवस केवल यात्रा और मनोरंजन का उत्सव नहीं, बल्कि हम लोगन के संस्कृति और देशन के जोड़े का माध्यम बा। पर्यटन आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सांस्कृतिक संरक्षण और वैश्विक सद्भाव के बढ़ावा देला। ऐसे हम लोगन के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन अपनाए का पर्यटन के सतत विकास में अपन योगदान देवे के चाहिए। अब देखें अगर देखल जाए तो अपन सोनभद्र भी इमें कौनो भी माने में कम नहीं, कहे से कि अपने सोनभद्र में भी घूमे बदे बहुत स्थान बाया जहां हम लोगन घूम सकीला, जाय सकीला। तो अपन सोनभद्र भी अगर पंचभिया लोग चाहें तो घूमें। देखें आज एक बड़ी अच्छी जानकारी हम लोगन अपने कार्यक्रम में शामिल कर ले है कि सोनभद्र में पर्यावरण का संभावना है। सनोज तिवारी जो साहित्यकार हुआ, इनसे सुरसरी द्विवेदी का बातचीत बा। देखें एक ही सुनल जाए, एक साथ साथ राजेंद्र पांडे और उनके संघाती लोगन के एक विकास गीत भी
0: सुनल
1: जाए। तो हम तो सबसे पहले ही कहब कि जवन सोनभद्र में पर्यावरण का संभावना बा ऊपर एक बातचीत हो जाए तो ठीक रही। तो एक जानकारी बा सनोज तिवारी से बातचीत भइल बा सुरसरी द्विवेदी का, तो सुनल जाए।
0: चलो सुन लेवल जाए।
2: साथियों, आज के दौर में यदि किसी की संपन्नता का आकलन करना है तो उसकी आर्थिक संपन्नता पर लोग निगाह डालते हैं। यदि व्यक्ति की एक संपन्नता उसकी आर्थिक स्थिति से की जाती है तो निश्चित रूप से किसी स्थान की भी संपन्नता को, सशक्तता को, मजबूती को समझने के लिए हमें वहां के आर्थिक स्थिति को समझना जरूरी है। अब जब आर्थिक स्थिति की बात आती है तो एक सोचने का विषय है कि उस स्थान की आर्थिक मजबूती को बनाने के लिए वह कौन से ऐसे स्रोत हैं। यदि स्रोत की बात करें तो कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। अगर हम प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं, वह प्राकृतिक स्रोत जो हमारे लिए धनार्जन के का साधन है, तो उनमें आते हैं वहां के स्थानीय पर्यटन स्थल। आज पर्यटन दिवस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे जनपद के जाने माने साहित्यकार श्री सनोज तिवारी जी हैं। आपसे चर्चा करते हैं सोनभद्र से जुड़े हुए पर्यटन स्थल के बारे में। नमस्कार
3: जी। नमस्कार
2: तिवारी जी। जैसा कि हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं यहाँ सोनभद्र में पर्यटन स्थल और पर्यटकों के आकर्षण का मूल स्रोत
3: जी, जैसा कि आप जानती हैं कि सोनभद्र जनपद प्रदेश का अकेला ऐसा जनपद है जहां एक साथ ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, प्राकृतिक, वन जीवों की उपलब्धता, भूवैज्ञानिक धरोहर के अनेक स्थल जैसे फॉसिल्स मौजूद हैं। वाराणसी में संपूर्ण विश्व के पर्यटक आते हैं। सोनभद्र

0: वाराणसी से मात्र 80 किलोमीटर दूर सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यदि समुचित ढंग से यहाँ पर्यटन का विकास किया जाए तो यहाँ पर पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। वाराणसी के नजदीक होने की वजह से विदेशी पर्यटकों का यहाँ साल भर जमावड़ा रहता है या उनका आकर्षण रहता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि हम दूर देश से आए हुए पर्यटक जो बनारस तक आके रुक जाते हैं और बनारस को एक अच्छा आर्थिक मदद देते हैं, और जब हम बनारस यानी काशी से मात्र 70 से 80 किलोमीटर के दूरी पर हैं और प्राकृतिक धरोहरों से परिपूर्ण है, चाहे हम सोनभद्र के किले की बात करें, चाहे यहाँ के बांध की बात करें या मंदिरों की बात करें, ऐसे बहुत से ऐसे पर्यटन स्थान हैं जहाँ हम हमारे दूर से बाहरी देशों से आए हुए पर्यटकों को बुलाएं तो वो बिल्कुल हमारे लिए एक रोजगार का माध्यम बनेंगे। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्योग का विकास होगा और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब बात आती है हमारे सोनभद्र के पर्यटन स्थल की, तो आप किसको वरीयता देते हैं?
0: जी, पर्यटन स्थल की जहाँ तक बात हो रही है, यहाँ पे हमारे यहाँ मुखा फॉल है। मुखा फॉल जो कि एक प्राकृतिक रूप से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है, हमारे जनपद के लोग जाते भी हैं, लेकिन इसकी व्यापक अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो ये अच्छा आर्थिक रूप से सोनभद्र को विकास करने में मदद करेगा। मुखा फॉल पे ही जो है आदि मानव द्वारा निर्मित रॉक पेंटिंग है, जिसे हम शैलचित्र भी कहते हैं, जो कि 10,000 वर्ष लगभग पुरानी है। तो पर्यटक आएंगे और जल क्रीड़ा का भी आनंद लेंगे और उस रॉक पेंटिंग को देखकर उसका भी आनंद लेंगे कि कैसे जो है प्राकृतिक रंग का उपयोग कर कुछ वृक्षों के पत्तियों और फूलों का उपयोग करके उन्होंने जो अपने सामने देखा और जो महसूस किया, जैसे नृत्य हो गया, जंगली जानवरों का शिकार हो गया, खेती हो गया, पशुपालन हो गया, को उन्होंने पत्थर को कैनवास के रूप में देख करके चित्रण किया, उसको उस पर उकेरा और कैसे वहां से इन्होंने आदिमानव से मानव बने और खेती करना शुरू किया, पहाड़ों से उतरकर मैदानों में उतरना शुरू किया और घर बना करके रहना शुरू किया, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण मुखा फॉल हो सकता है। साथ ही मिनी गोवा है, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, स्वच्छ जल के लिए और मखमली रेत के लिए, तैरती मछलियों के लिए पूरे जनपद में प्रसिद्ध है। तो हम लोग यदि इसको बढ़ावा दें, इसका भी उस पर असर पड़ेगा और हमारे पर्यटन की वृद्धि में, सोनभद्र के आय की वृद्धि में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। वैसे ही वह कैमूर वन जीव प्रभाग यहाँ बहुतायत मात्रा में कृष्ण मृग पाए जाते हैं, जहाँ का हिरण हमेशा आप जाएंगी तो वहाँ पे कूदते फांते नजर आएंगे, जो पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको रोमांच से भर देगा।
1: जी जी जी, देखिए आपने बड़े ही सुंदर और लयबद्ध तरीके से आदि काल से लेकर के आज के दौर में जो उस समय चित्रित किया गया और आज कैसे उससे लोग रोमांचित हो रहे हैं। एक पर्यटक को क्या चाहिए? उसे अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास को जानना है और आज उसी के आधार पर स्वयं को आनंदित करना है। एक पर्यटक का उद्देश्य भ्रमण का यही होता है। अगर हम बात अपने सोनभद्र के किलों की करें तो उस पर भी आप कुछ प्रकाश डालिए।
0: जैसा कि हमने बताया कि सोनभद्र जनपद में ऐतिहासिकता भी भरपूर मात्रा में है, तो यहाँ पे विजयगढ़ किला है। चंद्रकांता की कहानी यहीं से प्रेरणा प्रेरित होकर के देवकी नंदन खत्री ने प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता लिखा था। और यहाँ पे हमारे अघोरी की किला स्थित है। अघोरी के किला जो कि वीर लोरिक और मंजरी की कहानी से प्रेरित है, तो यहाँ हमारे जनपद को प्रेम का जनपद भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रकांता और वीर लोरिक और मंजरी की कहानी यहाँ बहुत प्रसिद्ध रही है। तो ये दो किले हमारे ऐसे महत्वपूर्ण किले हैं जो कि उस समय के साक्षी हैं कि हमारा सोनभद्र जनपद कितना समृद्ध था।
1: तिवारी जी, सोनभद्र में जैसा कि आपने बताया तमाम ऐसे आकर्षक पर्यटन स्थल हैं जिसको आज तो उठाया ही जा रहा है, संवारा जा रहा है। कहते हैं जब हमारे

0: प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ आए थे तो उन्होंने उसी समय एक भविष्यवाणी करी थी कि यह हमारे भारत का स्विट्जरलैंड है, और यहाँ के बांध की चर्चा उन्होंने करते हुए कहा कि यहाँ रोजगार के दृष्टिकोण से इस बांध का प्रयोग हम न केवल विद्युत उत्पादन के लिए करेंगे बल्कि अन्य कल कारखानों में बिजली और जलापूर्ति के लिए भी करेंगे।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा। यहाँ रिहंद बांध जो है अपने जनपद भी नहीं, अपने प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में विद्युत आपूर्ति करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इस जनपद को स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही वह मंत्रमुग्ध हो गए थे। यहाँ के विशाल काय वृक्ष, घने जंगल, कलकल करती नदियाँ और शोर मचाते झरने, उनको काफी उससे आकर्षण प्राप्त हुआ था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ का बांध ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया ही, नौकरी इत्यादि का दिया ही, साथ में इसी बांध के कारण यहाँ पे अनपरा में कई पावर प्लांट, ओबरा में कई पावर प्लांट बने जिनको यह जल आपूर्ति करती है और वहां से भी राजस्व की प्राप्ति यह बांध करती है, विद्युत आपूर्ति करती है और राजस्व की भी प्राप्ति यह बांध करती है।
0: तो यहीं से हमारे बात की शुरुआत भी हुई थी
1: जी,
0: कि यदि हमारे आर्थिक संपन्नता है तो हम अपने में संपन्न माने जाते हैं।
1: जी जी, इसीलिए संबत को ऊर्जा नगरी भी कहा जाता है,
0: और जिस नगरी को ही हम ऊर्जा नगरी करते कहते हैं
1: जी,
0: वहाँ के इतने ऊर्जावान व्यक्ति जो अपनी प्रतिभा को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने को बेरोजगार मानकर हार चुके हैं, उन्हें आपकी बातों से, आज की चर्चा से यह जानकारी जरूर मिलेगी कि हम कैसे एक रोजगार तलाशें।
1: जी बिल्कुल,
0: यदि हमारा युवा एक छोटी सी पुस्तक भी लिखता है, एक छोटा सा पेपर भी बना लेता है
1: जी,
0: जिसमें मात्र किलो की चर्चा हो, मात्र बांध की चर्चा हो
1: जी,
0: मात्र मंदिरों की चर्चा हो, तो वह भी हमारे युवा, अन्य जो भी पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे
1: जी,
0: तो एक तो जानकारी बढ़ी और दूसरा युवा के लिए एक आमदनी का जरिया भी बना, और यह छोटा सा आमदनी का जरिया कब उसे बुलंदी तक ले जाए यह कहना निश्चित नहीं है, किंतु असंभव ही नहीं है, क्योंकि जब यह प्रचार प्रसार अपने जिले से उठ के राष्ट्र तक जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से बाहरी पर्यटक हमारे यहाँ खींचे चले आएंगे। बड़ी अच्छी जानकारी थी सनोज जी, आपको इस सुंदर और समुचित बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किधर है?
3: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट,
2: ये तो झटपट काम है।
3: कैसे?
2: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
3: और बाकी चेंजेस?
2: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
4: आरबीआई कहता है
5: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
6: नैना,
7: हाँ भैया,
6: देख ये कितना बढ़िया जानकारी रही है, सोनभद्र में पर्यावरण की संभावना है। सनोज तिवारी जो उनकी साहित्यकार ना है, उनसे सुश्री द्विवेदी को बातचीत रहा था, इतनी बढ़िया जानकारी भाई, एकरे बदे बहुत बहुत धन्यवाद बा सनोज भैया के। लेकिन जोन धन्यवाद बा वो केवल झूरे झूर न रही,
7: ता आवर राजेंद्र पांडे और संघातिक गावल एक विकास गीत बा सुन लेवल जाए।
6: तो सुनत

देखें ये रहना है राजेंद्र पांडे और साथी लोगन कितना बढ़िया अपन विकास गीत सुनौले और विकास गीत सुनकर अपन मन जवन बा वो एकदम हरियर हो गल और स्वच्छता का बात करत रहना है। और देखें हम लोगन स्वच्छता पखवाड़ा भी मने मनावत है।

0: तारीख से लेकर 2 अक्टूबर
1: 2 अक्टूबर।
0: तक स्वच्छता का बात इतना बढ़िया अपने गीत गौने के माध्यम से कैलेन, इनके दही जा धन्यवाद। देखे ना ना हम लोगन अक्सर कोनो भी बात करीला या कोनो तर त्योहार हम लोगन के हैं आवला, तो तर त्योहार पर हम लोगन साफ सफाई का बात
1: करेला।
0: काहे से कि साफ सफाई जवन बा वो बहुत जरूरी है हम लोगन बदे, चूंकि अगर साफ सफाई न हुई तो कौनो भी त्योहार का वो आनंद जवन बा न आई। तो ऐसे कौनो भी उत्सव आवता तो उनमें थोड़ा सा साफ सफाई पर हम लोगन जरूर ध्यान दें।
1: बिल्कुल सही बात कह लेनी है भैया। तो देखे जब साफ सफाई के बात कैली है तो देखा कभी का जैसे कि होला ना कि अपन घर द्वार लोग साफ कर लेन, तो क्या करी है कि साफ करके ओके ले लीजिए हैं कूड़ा बाहरे फेंक दी है। तो देखा उसे भी तो अपन गंदगी फैलत ही बा, तो घर में साफ रखले से साफ सफाई नहीं होत बा। हमार कहना यह बा कि अपने आस पास भी साफ सफाई रखी, देखिए से अपन पर्यावरण भी दूषित हो जाला।
0: बिल्कुल।
1: तो देखा जब पर्यावरण दूषित होला तो उसे देखा अपने स्वास्थ्य पे भी असर पड़ाला, समाज पे भी असर पड़ाला। तो एक ही ध्यान में रखते हुए भी हमने लोगों की साफ सफाई करे की चाहिए।
0: बिल्कुल साफ सफाई पर ध्यान देवे के चाहिए। लेकिन एक चीज और कह दही, देखा मतदान हा महादान, और थोड़ा सा हम लोगन का जौन एक अधिकार मिलल बा मतदान करे का, तो अगर कोनो भी मतदान होता ओकर मतदाता हम लोगन बाई तो निश्चित रूप से मतदान में अपन सहभागिता हम लोगन के निभावे के चाहिए। काहे से कि अगर हम लोग मतदान दे का वोट दे का एक उपयुक्त अपन प्रतिनिधि चुनाव तो निश्चित बा कि हम लोगन के अच्छी सफलता मिली, विकास के पथ पर कहीं न कहीं हम लोगन आगे बढ़ब। तो देखें जोन मतदान बा उनमें भी अपन सहभागिता कहीं न कहीं एक मतदाता के रूप में हम लोगन के निभावे के चाहिए। और देखें कभी भी कोनो लालच में आय का अपन वोट केहू के भी ना देवे के चाहिए, ई भी न व्यक्त करे के चाहिए कि हम आपके वोट देली या उनके वोट देली या उनके वोट देली। देखे ये गुप्त दान है।
1: हाँ।
0: एके माने गुप्त ही रखे के चाहिए,
1: चाहिए।
0: तो अगर गुप्त रख कर हम लोगन ये महादान कर तो सबसे बढ़िया बा। अब तीज त्योहार जौन बा देखे 15 दिन बाद नवरात्र भी शुरू हो जाये, आज से पितृपक्ष भी शुरू हो गल बा। तो थोड़ा सा जब अपन उत्सव आवता तर त्योहार आवता तो वो हिसाब से हम लोगन के अपन तैयारी भी करे के चाहिए। अब धीरे धीरे देखें अपन जोन कार्यक्रम बा ओकर समय जोन बा वो हो चलल बा। अब अपने पंच भैया लोगन से ही हम लोगन विदा लेही, तो चले के
1: तो सब पंचन के राम राम, राम।

0: जौन अपन बाल गोपाल कार्यक्रम बा उनमें जुट गल है। अब बचवा लोगन भी अपन अपने कार्यक्रम में जुटल हवा आ वहाँ लोगन के अंदर भी एक उत्सुकता बा, कहे से कि ये समय वहाँ लोगन के स्कूल पर साफ सफाई पर तरह तरह का प्रतियोगिता होतिया। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता भइल, न्याय पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता भइल, ओकरे बाद ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता भइल, फिर जिला स्तर पर प्रतियोगिता भइल। आ ओमे जौन अपन बचवा लोगन रहना अपन सहभागिता निभौलेन आ कला प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान भी प्राप्त कैलेन, उसे जौन उनकर उत्साह बा अत्यधिक देखें बढ़ गल बा, कहे से कि स्वच्छता केवल घर और स्कूल का साफ सफाई का नाम न है, बल्कि अपने शरीर कपड़ा आसपास का वातावरण और अपने आदत के साफ सुथरा रखल स्वच्छता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शरीर के साफ रख, रोज स्नान करब, साफ सुथरा कपड़ा पहनल, दांत साफ कर और हाथ पैर साफ रखब, स्वयं से स्वच्छ स्वच्छ अपन आदत अपनावल, ये बहुत ही जरूरी बा। कहे से कि नैना देखल जाला अक्सर बचवा लोगन की बिना हाथ धोले खाना खात हूँ और बैठे जात हूँ। देखें जब से उनकर मने जैसे खाना खाए बदे बैठत हूँ जब, तो वो अपने हाथ के अच्छी तरह से साबुन से जरूर धो लें। बिना हाथ धोले कभी भी अपन बचवा लोगन भोजन करे बदे न बैठें। आ बचवा लोगन हर समय याद रखें कि हाथ में तरह तरह का गंदगी होला, गंदगी के वजह से कीटाणु हो सका ना, यही से खाना खाए से पहले या शौचालय के बाद खूब मल मल का उनके अपन हाथ धो लेवे के चाहिए। कहे से कि स्वच्छ रहे बदे दांत का सफाई भी बहुत जरूरी बा, तब हम लोगन स्वस्थ रह, और हर रोज दांत का सफाई करे के चाहिए। बहुत अधिक मीठी चीज खैले से भी जौन अपन दांत बा वो कुछ खराब हो जाला, कैसे कि बचवा लोगन के मीठी चीज बहुत पसंद
1: वाला,
0: वो मीठा खूब खाना, तो अगर मर मिठाई खाता है तो वो ब्रश टूथपेस्ट के साथ वो जगह के साफ रखें, सुबह शाम ब्रश करे का आदत जरूर डालें। कुछ बच्चों के परिवार में दांत साफ करे बदे नीम का दतुअन का प्रयोग भी होला, ता अपन बचवा लोगन दतुअन से भी दांत साफ रखें। कहे से कि दतुअन अगर बचवा लोगन करत हो तो ई भी बड़ी अच्छी आदत अपने बचवा लोगन का माना जाला।
1: सही बात कहलेन हाँ, देख ओकरे साथे साथे अपने बचवा लोगन के इहो चाही कि अपन जन हाथ का नाखून बा ओके भी काट के रखी। का होला कभी कभी कि अपन जैसे बाहर खेलत है तो मन गंदगी घुस जाला, जैसे आप कहली है ना अभी कि खाना खाए बैठी जालेन अच्छे से हाथ नहीं धोलेन, तो देखो उसे भी गंदगी अपन फैलला।
0: और बिल्कुल सही बात कथी, देखे वही बचवा लोगन से हम लोगन बात बात कही करब, लेकिन आज अपने कार्यक्रम में हुई काका ये भी अपने बचवा लोगन के बताए दही हम लोगन, तो जवाहर नवोदय परीक्षा है, गणित और तार्किक परीक्षा का तैयारी, ब्रजेश कुमार सिंह भैया से बातचीत बा। एकरे साथे साथे देखें अपन बचवा लोगन भी गीत सुने हैं सरस्वती वंदना के माध्यम से, तो उनके भी सुनल जाए। लेकिन हम आज कहत रही कि हरदम तो हम लोगन बचवा लोगन से के पहले जानकारी दिवाई ला, लेकिन आज हमार इच्छा इवा कि पहले अपन बचवा लोगन जौन सरस्वती वंदना अपने मुख से सुनावत आया वो सरस्वती वंदना सुनाए लें, ओकरे बाद बचवा लोगन की जानकारी हम लोगन दिवावल जाए।
1: चलो सुन लेवल जाए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: नैना
2: भैया
1: देखा है कितना बढ़िया सरस्वती वंदना हम लोग बचवा लोगन के मुख से सुनली संदेश से पहले बचवा लोगन के दही जा धन्यवाद। लेकिन एक बड़ी अच्छी जानकारी हम लोगन बचवा लोगन के सुनवावल चाहते हैं। जौन बचवा लोगन नवोदय का तैयारी करते हो फार्म भर दिले हुआ तो जवाहर नवोदय परीक्षा बदे गणित और तार्किक जौन प्रश्न आवा ना बड़ा कठिन होना। अब प्रत्येक बचवा लोगन गणित और तार्किक प्रश्न से भागा ना तो ये परीक्षा का तैयारी वो कैसे करें। ब्रजेश कुमार सिंह जौन वहाँ सहायक अध्यापक हम उनसे बातचीत बा तो बिना देर के लिए सुन ले।
3: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं इस समय हम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बहुआर सोनभद्र में हैं और आज हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ हमारी मुलाकात गणित के प्रवक्ता ब्रजेश कुमार सिंह साहब से हो रही है। और जो हमारे छोटे बच्चे कक्षा पांचवी में पढ़ रहे हैं और जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं फॉर्म भर दिए हैं प्रवेश परीक्षा के लिए तो गणित और तार्किक प्रश्नों का उत्तर वह कैसे दें उनकी तैयारी कैसे करें आज हम ब्रजेश कुमार सिंह साहब से जानेंगे। ब्रजेश जी नमस्कार।
4: नमस्ते सर।
3: आप गणित के अध्यापक हैं गणित के प्रवक्ता हैं और जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें यह बात समझ में नहीं आती है कि हम कहां से शुरू करें क्योंकि प्रारंभ करना बड़ा कठिन कार्य होता है तो वह यह नहीं समझ पाते हैं कि हम अपनी तैयारी को कहां से प्रारंभ करें। खास तौर से गणित और तार्किक क्वेश्चन दोनों उन्हें कठिन लगते हैं और इसलिए उनकी तैयारियों से कहीं न कहीं वो भागना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा की तो सर्वप्रथम जो प्रश्न पत्र आता है वो कितने समय का प्रश्न पत्र होता है।
4: जी बहुत प्रश्न बढ़िया किया और बच्चों को ये सही रहता भी है और होना भी चाहिए। देखिए इसमें प्रश्न जो होते हैं वो कुल 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं और इसकी जो समय सीमा है वो 2 घंटे की है यानी 120 मिनट की।
3: जी
4: 80 प्रश्न का जवाब 120 मिनट में देना है। मतलब हम बच्चों से ये कहेंगे कि हर प्रश्न के लिए 1.5 मिनट आपका निर्धारित प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब अभ्यास ऐसा करें कि एक प्रश्न का जवाब 1.5 मिनट में अगर कर लेते हैं तो 80 क्वेश्चन का जवाब 120 मिनट में हो जाएगा।
3: जी जी।
4: और देखिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि बच्चों को तैयारी करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जो हमारा है
3: जी
4: 80 क्वेश्चन एक्चुअली वो 3 भाग में बटा हुआ है। तीन भाग मतलब पहला भाग जो मेंटल एबिलिटी जैसे तार्किक शक्ति बुद्धि लब्धता वाला प्रश्न है
3: जी, जी।
4: ये 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चन का मार्क जो होता है 50 नंबर होता है।
3: जी
4: मतलब एक क्वेश्चन अगर बच्चा सही करता है तो 1.25 मतलब 1.25 नंबर उसको मिल जाएगा
3: तार्किक क्वेश्चन
4: तार्किक प्रश्न का। और दूसरा जो प्रश्न का टाइप है वो गणित का है जिसे अंक गणित का भाग कहते हैं अर्थमेटिक टेस्ट है। उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और उसमें 25 नंबर मिलता है
3: जी।
4: और तीसरा भाग जो है वो भाषा पर आधारित होता है उसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं उसके भी 25 नंबर होते हैं
3: जी।
4: इस तरह से बच्चों को ये जानकारी क्लियर होनी चाहिए कि 50 नंबर तार्किक क्वेश्चन के हो गए जिसके 40 क्वेश्चन होते हैं
3: जी
4: और 25 नंबर गणित के हो गए जिसके 20 क्वेश्चन होते हैं और 25 नंबर हिंदी के या इंग्लिश में से जो भाषा बच्चा चाहे ले ले
3: जी जी
4: और उसके इस तरह से 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं।
3: बिल्कुल
4: जी।
3: अच्छा ब्रजेश कुमार सिंह साहब पहले हम यह जानना चाहेंगे कि जो तार्किक प्रश्न है चूंकि इन पर अंक अधिक है तो ये तार्किक प्रश्न कितने प्रकार के आते हैं प्रवेश परीक्षा में?
4: देखिए सर, बहुत बढ़िया प्रश्न आप किए हैं, और इस तरह से जान लीजिए कि आज की दुनिया में आईएएस का एग्जाम हो या छोटा बच्चों के लिए हम आपके ले लें जेएनवेस्टी एसएससी, हर जगह ये तार्किक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब बच्चा जेएनवेस्टी की तैयारी कर रहा हो या आईएएस की कल फ्यूचर में करनी हो, उसको जो है तार्किक प्रश्न से गुजरना ही पड़ेगा। और ये एक छोटा सा प्रश्न नहीं होता, इसमें कम से कम 10-12 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 6 के पैटर्न पर जो जेनरेस्टिक एग्जाम हमारा हो रहा है, इसमें आम तौर पर 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न कैसे होते हैं, ये देखिए कभी कभार फिगर बना करके उसमें मतलब चित्र पर आधारित होते हैं, एक तरह का हो गया कि चित्र आधारित हो गया। दूसरा ये होता है कि उसमें कुछ अल्फाबेट्स लिख करके क्रम में लिखे रहते हैं, उसको आपको ऑड पहचानना होता है। तीसरा तरह का ये होता है कि कुछ नंबर भी लिखे होते हैं जिसमें आपको पहचान करके उसके तरीके से एडजस्ट करते हुए कुछ दिमाग को लगाते हुए दाएं बाएं करके सेट करना पड़ता है। चौथा जैसे क्वेश्चन लेते हैं इसमें, तो अब इस क्वेश्चन को लेते समय देखिए हर तरह के जैसे मिरर इमेज का होता है, जैसे आप पीक को लिखें और लिख करके किसी मिरर के सामने रखें तो क्यों दिखेगा वो?
3: अच्छा
4: हाँ, इस तरह से मतलब बच्चे को सब्जेक्ट से हट करके मानसिक क्षमता को पहचानने के लिए ये तार्किक प्रश्न किए जाते हैं। और ये 10 तरह के होते हैं, इसमें काफी डिटेल्स में है, इसको जानकारी के लिए बच्चों को जो है कुछ किताबें खरीद करके तैयारी करनी चाहिए।
3: लगातार अगर बच्चे अभ्यास करेंगे तो निश्चित है कि वह इसकी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कुछ ऐसा उदाहरण देकर अपने बच्चों को तार्किक प्रश्नों के बारे में बता दीजिए जिससे बच्चों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए।
4: जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किए आप, और इस बच्चों को फायदा इससे मिलता है। देखिए मैं एक प्रश्न बताता हूँ, जैसे बताया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है।
3: जी जी,
4: अब ए ऑप्शन हम दे दें कि गाय है, बी दे दें कि भैंस है
3: जी,
4: और सी दे दें कि बकरी है, और चौथे ऑप्शन में हम इसमें ला करके एक जो है कौवे को बना दें
3: जी।
4: तो अब देखने में आपको क्लियर हो जाएगा कि चार ऑप्शन में से एक अलग है, जिसे ऑड
3: जी,
4: मतलब इसको ऑड वाला टर्म्स बोलते हैं। तो ये अलग क्वेश्चन हो गया, बच्चा जान जाएगा कि देखिए बाकी जो तीन हैं वो तो चार पैर वाले हैं लेकिन एक तो पंख वाला आ गया
3: जी,
4: तो ये अलग हो जाता है।
3: बिल्कुल,
4: और ये एक तरह का क्वेश्चन होता है, ये तार्किक होता है, लॉजिकल जिसे कहते हैं। और देखिए इसी तरह के बहुत प्रश्न होते हैं। अब देखिए एक प्रश्न होता है ऑड मैन आउट करके, मतलब आपके सामने एक ही फिगर है बना देगा
3: जी,
4: अब उसको कभी 90 डिग्री घुमा देगा, 90 डिग्री घुमा दिया, फिर 180 डिग्री घुमा दिया
3: जी,
4: फिर क्या करेगा है? उसको 360 डिग्री घुमा देगा। तो अब बच्चे को पहचानना होगा कि क्या किसी तरह से घुमाने से वही फिगर मिल रहा है कि नहीं, अगर कहीं अलग मिल रहा है तो वो आंसर हो जाएगा।
3: अच्छा,
4: तो ये बड़ा गजब का होता है, कोई सिलेबस इसका नहीं है लेकिन बच्चे चाहें तो प्रैक्टिस करके ऐसे प्रश्न को बड़े अच्छे से पहचान लेते हैं, और ये उनकी तात्कालिक बौद्धिलब्धता क्षमता को पहचान करने के लिए अच्छा होता है।
3: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे गणित के प्रश्नों पर आ रहा हूँ। गणित के प्रश्नों की तैयारी जो हमारे बच्चे हैं वह कैसे करें?
4: जी बहुत बढ़िया जी, हमारा एक गणित का जो प्रश्न होता है जिसे अंक गणित का पाठ बोला जाता है
3: जी जी,
4: ज्यादातर इसमें अंकों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन टोटल होते हैं 20
3: जी,
4: 20 क्वेश्चन पर मार्क होता है 25
3: जी
4: जी। और देखिए समय तो मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, इसके लिए टाइम भी निर्धारित अंक में देखें तो 30 मिनट जैसा मैं थोड़े पहले बताया था, तो 30 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन करना, मतलब हर क्वेश्चन को 1.5 मिनट में करना, हर एक परीक्षार्थी के लिए बड़ी चुनौती का काम होता है। प्रश्न को पढ़ना और उसको उत्तर देना 1.5 मिनट में, ये बड़े मतलब सिस्टमेटिक प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है
3: जी।
4: तो अभिभावक से भी हम मतलब उम्मीद रखते हैं कि उनकी प्रैक्टिस कराएं, बच्चे को घड़ी रख करके 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं। इसमें जो है 20 क्वेश्चन कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए इसमें तो बहुत सिलेबस है ना, इसका एक स्प्लिटअप होता है कि मैं किसके तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
3: जी।
4: तो मैं आप बताना चाहूंगा इन बच्चों को कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 12 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
3: जी।
4: अब 12 तरह के क्वेश्चन पूछने में ये अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, अब देखिए इसको बड़े ध्यान पूर्वक से अगर कोई बच्चा ध्यान से सुन ले तो उसके लिए ठीक रहेगा कि नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम पर मतलब जिसमें अंक पर आधारित क्वेश्चन होते हैं
3: जी,
4: और अंक के आधारित जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब पूछे जाते हैं। अब उसके बाद जो होता है फ्रैक्शन जिसे हम भिन्न कहते हैं, अब भिन्न पर आधारित भी क्वेश्चन रहते हैं, वो भी जोड़ घटाना गुणा भाग पर रहता है। तीसरा क्वेश्चन जो से होता है जिसे हम एलसीएम एचसीएफ करके बच्चे निकालते हैं, हर नंबर का फैक्टर निकाल करके उसका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ये जो एलसीएम और एचसीएफ है उसको निकाल करके क्वेश्चन इस पर आधारित और आते ही हैं क्वेश्चन इस पर। देखिए डेसिमल आज की दुनिया में गणित का बहुत बड़ा पार्ट है, तो दशमलव पर आधारित भी क्वेश्चन होते हैं
3: जी।
4: तो दशमलव पर आधारित भी क्वेश्चन जो आते हैं उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस बच्चा करके कर सकता है। अब देखिए मेंसुरेशन का पार्ट होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी की एरिया कितनी है, किसी की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, जिसमें आयत आ गया, त्रिभुज आ गया, सर्कल मतलब वृत्त आ गया, तो इनके आधारित भी क्वेश्चन आते हैं
3: जी।
4: जी इसके क्वेश्चन जो है आजकल खूब पूछे जाते हैं, और आज की दुनिया में आंकड़ों पर आधारित जिसे डाटा कहते हैं
3: जी,
4: आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन श्योर आता है।

0: साहब आपसे मुलाकात हुई और इतनी अच्छी बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: देखा भैया, हमने लोगों के तरफ से भी इनके धन्यवाद रहा। देखिए कितना बढ़िया जानकारी मिलल है। जवाहर नवोदय परीक्षा हेत गणित और तार्किक परीक्षा की तैयारी कैसे कैल जाए, ये पर अपन ब्रिजेश कुमार सिंह जन सहायक अध्यापक रहना है, उनसे देखा आपका बातचीत रहल है। तो इतना बढ़िया जानकारी मिलल, हमारा बचवा लोगन भी सुन ले हुई है, आई के देखा गुनिया भी।
3: बिल्कुल, ये जानकारी से अपन बचवा लोगन जरूर लाभ उठाई हैं, जौन नवोदय विद्यालय का तैयारी परीक्षा वदे करत हम प्रवेश परीक्षा वदे अपन बचवा लोगन। और एक बात अपने बचवा लोगन से हम और कहल चाहब कि बचवा लोगन देखें, आजकल अक्सर देखल जाला कि बचवा लोगन ज्यादातर ध्यान मोबाइल से पढ़े में देना, मोबाइल से प्रत्येक चीज माने पढ़ल चाहना देखल चाहना, उनकर रुझान जौन बा वो मोबाइल के तरफ अधिक बा। तो देखें थोड़ा सा माने परिवेश के अनुसार, वातावरण के अनुसार उनके केहे जौन किताब बाई अपन किताब पढ़े पर अधिक से अधिक ध्यान देवे के चाहिए। उनके पत्र पत्रिका अखबार पढ़े का आदत बनावे के चाहिए। और साथे साथे जौन भी कहानी का किताब बाई या कोनो साहित्यिक ओइसन किताब बाई या धार्मिक पुस्तक बाई, उनकर अध्ययन बचवा लोगन जरूर करें। कहे से कि जब पढ़ले का आदत बन जाए ना, तो उनकर मन किताब के ही पढ़े का करी, तब मोबाइल की तरफ से धीरे धीरे धीरे धीरे उनकर मन उचट जाए। लेकिन अभी तो जौन अपन बचवा लोगन हो, केवल उनकर ध्यान जौन बा वो सिर्फ मोबाइल की तरफ बात, ऐसे बचें का ऐसे कि एक बड़ा दुष्प्रभाव अपने बचवा लोगन पर पड़ा था। ऐसे उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन का आदत उत्पन्न होती है। तो देखें अगर कोनो भी गलत आदत अपने बचवा लोगन के अंदर आवता, तो उसे बचे का प्रयास जरूर अपने बचवा लोगन के करे के चाहिए। देखें धीरे धीरे अपने जौन कार्यक्रम बा अपन एकर समय हो चलल बा, अपने बचवा लोगन से फिर अगले रविवार के हम लोगन यही समय मुलाकात करब, बात करब, तब अब चले के चाहिए। तब बचवा बोला जय हिंद,
1: जय।

अभी हमारे ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। आकाशवाणी के हम ओबरा केन से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है बलमा फिल्म से। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का है और आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के गायस गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केन से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही क्षणों में आप मानी लखनऊ केन्द्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी,
2: हाँ,
3: आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: RBI कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से की मिलकर काम करने की अपील। आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर SIR को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कहा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को किया जा रहा है कमजोर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए शामिल। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बताया राज्य की नई पहचान। और प्रदेश में पिछले दो दिनों में हुई भारी बारिश से 56 लोगों ने गवाई जान। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देने की अपील की।
7: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशामुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
7: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है। ऐसा ही एक समूह है सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह, जिससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस समेत कई उत्पाद तैयार कर रही हैं।
7: साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है।
6: सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किए जाने पर समूह की अध्यक्ष कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है।
8: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे समूह को चुने और हम लोग मेहनत किए हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बना और हमारा प्रोजेक्ट बनता है। बहुत खुश है, हमारे समूह की महिलाएं भी खुश हैं क्योंकि इस दुनिया जानेगी।
6: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। एसआईआर को लेकर विपक्ष की आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा कि एसआईआर के बारे में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने की ये प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर कर रही है।
9: आश्चर्यजनक है कि देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों की वर्तमान हरकतें और उनकी बयानबाजी अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है। इस बार की एसआईआर की कार्रवाई को लेकर के जिस प्रकार का हायतोबा दलों ने मचाई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
6: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे दिन आज इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में विशेष व्यावसायिक सत्र आयोजित हुआ, जिसका विषय वैश्विक व्यापार वृद्धि के लिए भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना रहा। सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश विश्व में अपनी खास पहचान बना रहा है।
10: विश्व में आज उत्तर प्रदेश पहचाना जा रहा है। 3,000 करोड़ से अधिक एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं समझता हूँ अब उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की बुलेट ट्रेन चल गई है और बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाने वाली।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
11: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए इलाज को सुलभ बनाया है।
12: सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो, इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं।
11: वाराणसी में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी अशोक यादव ने बताया कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत मददगार है।
13: आयुष्मान कार्ड से घुटनों का प्रत्यारोपण हुआ है, वो फ्री में हुआ है और इस अस्पताल और डॉक्टर के लिए धन्यवाद और सरकार के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
11: इस योजना के लाभ का दायरा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
6: प्रदेश में पिछले 48 घंटों से ज्यादा समय से जारी भारी वर्षा और खराब मौसम को देखते हुए प्रभावित जनपदों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। राहत आयुक्त डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद ने आज राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
14: प्रदेश में पिछले 60 घंटों के दौरान लगातार बारिश और आंधी तूफान से राज्य में 56 जनहानि, 107 पशुहानि और 1000 से ज्यादा मकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। 25 सितंबर से 27 सितंबर की सुबह तक प्रदेश में 66.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के 56 जनपदों में अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई है। इस क्रम में प्रदेश के राहत आयुक्त ने आज समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और प्रभावित परिवारों की दिक्कतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। राहत आयुक्त ने जिलाधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी लेने और तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों और आपदा विशेषज्ञों को फील्ड में रहकर राहत और बचाव कार्यों की प्रभावी निगरानी करने, प्राथमिकता के आधार पर राहत सामग्री और सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त ने फसल क्षति का तत्काल सर्वेक्षण और आकलन कर नियमानुसार मुआवजा प्रदान करने की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता पर करने के निर्देश भी दिए हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम।
6: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से की मिलकर काम करने की अपील। आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर SIR को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कहा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए शामिल। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बताया राज्य की नई पहचान। और प्रदेश में पिछले दो दिनों में हुई भारी बारिश से 56 लोगों ने गवाई जान। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
15: हर ब्रांड के अलग अलग KYC पेपर्स। काश एक चाबी होती।
16: एक चाबी है CKYC ID।
15: CKYC मतलब
16: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
15: वाह। RBI कहता है
16: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
17: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केन से बोल रहे हैं। प्रस्तुत श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है खामोशी फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और हरिहरन की।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए।
1: फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल।
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: संदेश से पहले श्रोताओं आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में तड़ीवार फिल्म का गीत। और अब श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फहीम अब्दुल्ला की आवाज में तेरे इश्क में फिल्म से।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संदेश से पहले श्रोताओं, आप सबने सुना भूपेंद्र सिंह की आवाज में सत्या फिल्म का गीत। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं गायत्री गंजेवाला की आवाज में रकीब फिल्म से।

गायत्री गंजावाले के गाय इस गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों को कार्यक्रम सब रस समाप्त हुआ। आकाशवाणी की हम ओबरा केन से बोल रहे हैं।

अगले क्रम में आइए सुनते हैं श्रोताओं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत और सुगम संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना ये प्रस्तुति अनु मलिक की आवाज में, और अब श्रोताओं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हंसराज हंस की आवाज में।

सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना जगजीत सिंह की प्रस्तुति, और इसी के साथ हमारा सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम ओबरा केन से बोल रहे हैं।

अगले क्रम में ये सुनते हैं श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबको सुनवा रहे हैं आंदोलन फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

अभी आपने सुना दिल फिल्म का गीत, उदित नारायण और सदना सरगम की आवाजों में। और श्रोताओं, अब फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं सोनू निगम और साथियों की आवाज में महाराजा फिल्म से।

सोनू निगम के जायज गीत के साथ ही हमारा फिल्म गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम ओबरा केन से बोल रहे हैं और श्रोताओं अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। और सुगम संगीत कार्यक्रम के शुरू में आइए सुनते हैं मिताली सिंह को।

0: पंकज उदास की प्रस्तुति के साथ हमारा ये सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार। बस थोड़ा सा करिए इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, विमेंस स्टीपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ

0: जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
0: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती

0: स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और एलएनजी दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth. Technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor. Who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
3: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
4: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
3: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
5: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
3: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।

0: एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार रजत और तीन कांस्य सहित कुल सात पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far. Also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200 meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. Now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
3: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब

0: किधर है?
1: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: आरबीआई कहता है,
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: संदेश की बात, श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, हम सब उस्ताद हैं फिल्म से। अर्शद भोपाली के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगले क्रम में प्रस्तुत है श्रोताओं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आप सबको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से, आवाज है अलका याग्निक की।

अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में नरसिम्हा फिल्म का गीत। और इसी क्रम में श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, मन्नर उदास और अलका याग्निक की आवाज में त्रिदेव फिल्म का गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं देवाशीष देशगुप्ता और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। गीत के बोल अजीज खान समानी के हैं और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: FM 107.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सभा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। एस सुप्रदीप एक प्रतिभाशाली एवं सिद्ध हस्त बांसुरी वादक हैं और संगीत की एक प्रतिष्ठित परंपरा से जुड़े परिवार से आते हैं। आप सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक एस ए शशिधर के सुपुत्र एवं शिष्य हैं। आपने अपने पिता के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत की बारीकियों और समृद्ध संगीत परंपरा को आत्मसात किया है। सुप्रदीप ने छोटी उम्र से ही संगीत के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया है। आपने राज्य स्तरीय जूनियर और सीनियर संगीत परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं और दोनों में रैंक प्राप्त की है। आपकी संगीत प्रतिभा और संभावनाओं को सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियों के माध्यम से भी मान्यता मिली है। आप आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी कला प्रस्तुति के माध्यम से आपने विविध श्रोताओं तक शास्त्रीय संगीत पहुंचाने तथा उसके प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। आपकी कला यात्रा भारत तक ही सीमित नहीं है, आपने अपने पिता के साथ विदेशों की संगीत यात्राओं में भाग लिया है, जहां आपने बांसुरी की युगल प्रस्तुति दी। प्रसारण और डिजिटल माध्यमों में भी सुप्रदीप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। यस सुप्रदीप इज अ टैलेंटेड एंड एकम्प्लिश्ड फ्लूटिस्ट हु बिलोंग्स टू अ डिस्टिंग्विश्ड फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। ही इज द सन एंड डिसाइपल ऑफ रिनाउंड फ्लूटिस्ट यस ए शशिधर एंड हैज इम्बाइब्ड द नुआंसेस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक through the rich tradition and guidance of his father. Supradeep has demonstrated his dedication and commitment to music from an early age. He successfully completed the state junior and senior music examinations, securing ranks in both. His musical talent and promise have been recognized through prestigious scholarships from the Center for Cultural Resources and Training and the Ministry of Human Resource Development. He is an A-grade artist of Akashwani Bengaluru. Through his musical performances, he has reached diverse audiences and contributed to the promotion and propagation of Indian classical music. His artistic journey extends beyond the Indian stage. Supradeep has accompanied his father on musical tours to the abroad, where they presented flute duet concerts. Supradeep has also made his presence felt in the broadcast and digital space.
1: आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम पर के वी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित के एम।
2: इन टुनाइट्स परफॉर्मेंस ही इज अकम्पनीड ऑन वायलिन बाय

0: अगली प्रस्तुति है मरीवेरे दिक्केवरु। यह पठनम सुब्रमण्य अय्यर की लोकप्रिय रचना है, जिसे राग लतांगी और खंड चापुताल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज मरीवेरे दिक्केवरु, अ पॉपुलर कॉम्पोजिशन ऑफ पठनम सुब्रमण्य अय्यर, सेट इन राग लतांगी एंड खंड चापुताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित के एम। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए एस सुप्रदीप अब प्रस्तुत कर रहे हैं रा रा राजीव लोचना। यह मैसूर वासुदेवाचार्य की मधुर रचना है जो राग मोहनम और आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, ऑन मृदंगम केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंग लिखित के एम। कंटिन्यूइंग हिज परफॉर्मेंस यस सुप्रदीप नाउ प्रेजेंट्स रा रा राजीव लोचना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य, सेट इन राग मोहना एंड आदिताला।

0: अभी आपने तनी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोर सिंह पर लिखित केएम ने प्रस्तुत किया।
1: That was तनी आवर्तनम presented on मृदंगम by केवी रविशंकर शर्मा and on मोर सिंह by लिखित केएम।
0: एस सुप्रदीप अपने बांसुरी वादन का समापन कन्नड़ भक्ति रचना तंबूरी मीठी दवा से कर रहे हैं। यह महान संत कवि पुरंदर दास की रचना है और राग सिंधु भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यस सुप्रदीप कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद अ टाइमलेस कन्नड़ा डिवोशनल कॉम्पोजिशन तंबूरी मीठी दवा कंपोज्ड बाय द ग्रेट सेंट पोएट पुरंदर दास सेट इन राग सिंधु भैरवी एंड आदि ताला।

0: सभा में आप सुन रहे थे एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित केएम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदे रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही वाज एकॉम्पनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम बाय केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंग लिखित केएम। This program is a contribution of Akashvani Bengaluru, brought to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath main Ashutosh Mishra. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
4: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर NC जो सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैपरिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और

आकाशवाणी के ओबरा केन से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:50 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।